इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब समय है एक अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी का एकांतारिका 11वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी का एकांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी का एकांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 11वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि अवंती से निकलकर वृकवन पैठार गांव प्रेतपुरी से होते हुए चंद्रपुर गांव के निकट के एक गांव पहुंचते हैं। उनकी पल पल रक्षा करने वाले जोगी ने परम गुरु बाबा गोरखनाथ के जन्म की पावन कथा सुनाई थी। अब आगे
2: उमड़ते घुमड़ते जल प्रवाह से आप्लावित वर्षा नद के किनारे प्रतीक्षा करते हुए राजा भर्तृहरि और ओघड़ जोगी पानी कब उतरे और कब पहुंच जाए नदी के उस पार। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, किंतु पानी उतरने के कोई आसार नहीं।
3: भर्तृहरि, अब तो संध्या होने को है और प्रतीत होता है कि रात्रि विश्राम के आश्रय की खोज कर लेनी चाहिए। गरक, यहाँ तो कोई वृक्ष भी नहीं है।
4: हाँ, और इस विस्तृत पार वाली नदी के पार उतरने का कोई साधन भी नहीं है महाराज। अरे हाँ, एक नाव तो तट पर है, पर केवट कहीं नहीं दिखाई देता।
3: खोजने पर मिल भी सकता है राजा। मैं

0: आसपास देखता हूँ। तुम्हें रात्रि आहार भी चाहिए, तुम यहीं रहना।
1: आप किधर जा रहे हैं महाराज?
0: उस तरफ, मुझे आभास हो रहा है कि वहां कोई मिलेगा। तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अरे दोनों मिलकर खोजें।

0: मैंने कहा था ना भर्तरी, मुझे आभास हो रहा था कि निकट ही कहीं आश्रय भी मिलेगा और भोजन भी। वो वहां देख, एक झोपड़ी दिख रही है।
1: त्रिकालदर्शी हैं आप महाराज?
0: ना ना राजा, जो दिख रहा है वो गुरु की इच्छा है। मैं साधन भर हूं। कोई है? कोई है? अलख अलख निरंजन।

0: प्रणाम महाराज।
1: सौभाग्य बड़ी।
0: आज्ञा दे महाराज, क्या सेवा करूं? जल भी तो नहीं पिला सकते आपको। महाराज, हम सुपच जाति के लोग हैं, जूठन पर जीते हैं, हम जूठन खाने वाले हैं।
1: ला, वही दे दे, दे दे माई। अरे हम भी तो जाने कि जूठन का स्वाद कैसा होता है।
0: ना ना देवता, पातक लगेगा।
1: तुझे जोगी की भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा ला ला, इस खप्पर में अपनी जाति की भिक्षा डाल दे। अपनी जाति को आज और अभी त्याग दे। मेरे साथ बोल, बोल माई, अलग अलग गोरख गोरख।
2: भ्रातरी को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। स्त्री के दोनों बालक कुत्ते के साथ निकट आ पहुंचे हैं और वो कभी जोगी बाबा और कभी भूमि पर मस्तक रगड़ती अपनी माँ को देख रहे हैं। वो विनीत भाव में कहे जा रही है,
0: जाति तो देह के साथ ही छूटती है बाबा, कर्म का भी लेख है यह, जो जन्म के साथ आता है और मरण के साथ ही मिटता है।
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। जाति और जन्म अलग अलग बातें। आकाश से टपकने वाली बूंद निर्मल होती है माई, कीचड़ तो बस इस संसार में है जो उसे आत्मसात कर लेता है। मेरी जाति छूट गई तो फिर तेरी कैसी बनी रहेगी? अरे गुरु का नाम पारस है, पारस लोहा बिछूकर सोना बन जाता है। हम सब मानस जात है, कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। वैसी ये आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर। अब देर न कर माई, ला इस खप्पर में पानी भर दी, मैं तेरे पूरे परिवार की जात पी लेता हूं। जैसे किसी ने समुद्र को पी लिया था वैसे ही। ला ला माई ला।
2: स्त्री अपने आप से लड़ती हुई सी झोपड़ी में गई और जल के संग दो रोटियां ले आती है।
0: अभी बस इतना ही है महाराज, दो रोटियां बच्चों के लिए बचाकर रखी थी।
1: आनंद है, ओम ओम परमानंद है माई। एक रोटी बच्चे के लिए रख। ले भरथरी, ये आधी रोटी तू भी खा ले। घटे पिंड निरंतर व्यापे, श्री शंभु यति गुरु गोरखनाथ निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप। बोलिए, हो जाति भस्म, जाति भस्म हो, जाति भस्म हो, अलग अलग। गोरख गोरख।
2: जोगी जोर से चिंघाड़ता है, श्रृंगी मुंह से लगाकर लंबी करू मारता है। भरथरी को लगा जैसे धरती एक बार पूरी घूम गई है। ओघड़ ने रोटी के चार टुकड़े किए, एक श्वानों को, दूसरा पास खेलते हुए बच्चों को और एक भरथरी को देकर एक हिस्सा स्वयं लिया।

0: और भरथरी से कहा,
1: राजा इसे खा ले, इससे ऋतुओं के कुप्रभाव से तेरी रक्षा हो जाएगी। और कह अलख निरंजन,
2: अलख निरंजन।

0: तृप्त हुए माता, तेरे और तेरे परिवार का सुख श्री बढ़े। हाँ, अब ये बता कि इस नदिया के पार कैसे जाना होगा, वो उस नाव का केवट कहाँ मिलेगा?
1: महाराज, मेरा पति जब आएगा तब आपको नदी के पार ले जाएगा, आता ही होगा। तब तक आप इस कदम की छाह तले विश्राम करें, मैं चटाई बिछाए देती हूँ, मैं गाय भी दोहलाती हूँ, गुनगुना दूध पी लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी महाराज।
2: लगता है ये रात भी आज यहीं बीतेगी।
0: अरे क्या अंतर पड़ता है, इस पार बीते या उस पार, हाँ रात को तो बीतना ही है। राजन, दूर वो वहां परछाई देख रहे हो?
2: संभवतः उस स्त्री का पति है महाराज, मद्य के प्रभाव में लगता है। देखो उसके पांव डगमगा रहे हैं। हाँ, इधर आया ही नहीं, झोपड़ी की ओर मुड़ गया।
1: महाराज यह दूध ले लें, मेरा पति तो अपने संग जूठन ही लेकर आया है, सो आपके योग्य नहीं महाराज, हम तो जूठन पर ही आश्रित हैं, इसलिए घर में आटा भी नहीं रखते, अन्यथा मैं रोटियां ही बना देती।
0: सब अच्छा है, उचित है माई, अरे हम संतुष्ट हैं, है ना भर्थरी? तुम्हारा ये गोरस अमृत तुल्य है। तू कुछ सोच रहा है भर्तरी? कहीं उज्जैनी तो याद नहीं आ रही है तुझे?
2: जी महाराज।
0: गोरख, देखो यहां घर में आटा तक नहीं और वहां किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। प्रचुर धन, प्रचुर धान्य, शक्ति, वैभव, विलास, दूध और मदिरा पनालों में बहती है, सहस्त्रों भवनों और आलयों में व्यंजन इतने प्रकार के कि श्रीमंतों के स्वान इन्हें सूंघकर भी हट जाते हैं। लगता है कि पार पहुंचना अब संभव नहीं है।
1: लज्जित हूं महाराज, मेरा पति मद के उन्माद में होने के कारण आपके सामने नहीं पड़ रहा है। फोर तक जब मद का प्रभाव उतर जाएगा तभी वह नाव लेकर जा पाएगा।
0: साध्वी चिंता न कर, अरे आज की रात कदम की छाव में ही हमारे बिताने का योग है। तू जा भोजन और विश्राम कर, हमें कुछ नहीं चाहिए माई, क्यों भर्थरी?
2: जी जोगी।

0: सोता है या जागता है भर्तरी?
1: जाग रहा हूं महाराज।
0: तो गुरु का ध्यान लगा, गुरु पर विश्वास कर। मैं और तू कठिन वन पर्वतों से होकर सुरक्षित निकल आए हैं। न तो सिंह वृक या व्याघ्र ने खाया और न ही हमें अजगर ने निगला। प्रेतपुरी से बचाया है तू, इसलिए क्योंकि गुरु की रक्षा में था तू। गुरु की रक्षा में दुखों का उपचार संसार के बीच रहकर ही हो सकता है। लगता इसीलिए गुरु गोरखनाथ संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा था, देह को साधो, मन को साधो, विचार को साधो, मन वचन और वाणी की फाक।

0: जब कम होगी तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जाग रहा है राजा भर्तृहरि?
1: हाँ महाराज।
0: ये भूमि जाग रही है, वो स्त्री जाग रही है जो अभी अभी हमें दूध पिला कर गई है। भैरव के ये वाहन जाग रहे हैं, जागृत और सचेत। किंतु तेरी उज्जैनी सो रही है, अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर सो रही है उज्जैनी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी स्त्री जाग रही है, सोई नहीं रानी पिंगला, तेरी चिंता में नहीं सोई। और हाँ, वो भी जाग रही है जो हर पल प्रतिवक्त तेरे साथ है, स्थान स्थान पर तुझे गिरने से बताती है, तेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है।
1: वो कौन जोगी महाराज?
0: तू उसे भूला नहीं है?
1: शची।
0: और वो भी जाग रही है भर्तृहरि, जो तेरे काव्यों पर मोहित है। वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है, जो जानती है कि तेरे काव्यों में नैतिकता तो है किंतु सहजता का अभाव है। इसलिए भर्तृहरि यहां से चंद्रपुर केवल 2 दिन की यात्रा पर है। वहां पहुंचो राजा, तुम्हें अकेले जाना है।
1: और देव आप?
0: गुरुदेव, गुरु की इच्छा यही है। राजा भर्तृहरि चंद्रपुर अब अधिक दूर नहीं है। भटक न जाओ तो मार्ग भी निरापद है। आगे के मार्ग में मैं नहीं होऊंगा। गुरु का संदेश मिला है कि मैं उनके पास वापस लौट जाऊं। सुपत परिवार अब सो गया है और तुझे जागते रहना है। हाँ। मैं अब चला अलग।

और ओघड़ चल पड़ा। भृतहरि देखते रहे, ओघड़ नदी के किनारे पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर भृतहरि पर दृष्टिपात किया। भृतहरि ने उसकी आंखें देखी, इस फुलिंग की तरह चमकती हुई। ओघड़ अब छाया भर दृष्टिगोचर हो रहा था। उसने नदी में प्रवेश किया, भृतहरि की ओर अभय मुद्रा में हाथ उठाए। भृतहरि को लगा कि जोगी का अट्टहास हवाओं में गूंज गया है और विस्फरित भृतहरि ने देखा कि वह नदी के जल पर बहा चला जा रहा है। देखते देखते उस पार अदृश्य हो गया। देखते रहे अकेले खड़े राजा भृतहरि, आश्चर्य से स्तब्ध, मूक और हतप्रभ।

अकेला रह गया भर्तृहरि तू, अंततः अकेला। औघड़ भी अपनी राह चला गया, किंतु उसने कहा था कोई है जो मुझे स्थान स्थान पर गिरने से बचाती है, मेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है। शची शची, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो, मेरे एकांत की साझीदार? औघड़ कह रहे थे कि तुम भी जाग रही हो, तुम्हारी अनिद्रा का कारण मैं ही हो सकता हूं शची। मैं चिर अतृप्त चिर संशयी, भाग कर चल तो पड़ा लेकिन जानता नहीं कि कहां पहुंचना है।

0: शची, शची कुछ तो बताओ।
1: क्या बताऊं राजन?
0: शची, तुम मेरे साथ हो ना?
1: हाँ राजन।
0: तुम्हारा साथ ही मेरी तृप्ति है, मेरा निश्चय है शची।
1: जी।
0: ये अनुभव एकांगी नहीं, सापेक्ष अनुभव है।
1: तो
0: आज यहां से जिस सुपच दंपति का अतिथि हूं वो नितांत अकिंचन है, किंतु किसी महामहिम नरेश से अधिक सुखी। मैं तुमसे पूछता हूं शची कि ऐसा क्यों है, उनकी तृप्ति उन्होंने कहां से पाई शची?
1: मैं क्या बताऊं राजन, राजा तो आप हैं।
0: प्रिय, जाने कब मैं ये स्वीकार कर पाऊंगा कि पैठार की निर्धनता के बीच अपनत्व की निधि जो मैंने देखी उसके सामने अवंती का वैभव कितना तुच्छ, कितना श्रीहीन है। किंतु पैठार और अवंती दोनों ही की स्मृति मुझे साथ साथ हो आती है, और इस महानाट्य का वो विष्कंभक औगढ़ जोगी भी।
2: गोरख।
0: अभी अभी जो विज्ञान की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए नदी ताल पर पांव पांव चलते उस पार चला गया है, क्या ये अविश्वसनीय दृश्य था? जोगी आया था गुरु के आदेश पर मेरी रक्षा करने, और यहां लाकर छोड़ गया। आगे की राह मुझे स्वयं ही चलना है, पर चेतावनी दे गया है कि यदि भटका नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाऊंगा। त्रिकालदर्शी जोगी का आशय क्या था? 2 दिन का मार्ग है चंद्रपुर का।

0: अचानक कुत्तों के भौंकने का स्वर तेज हो जाता है, जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। सुपच नारी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है।
1: कौन है? कौन है? महाराज, आप सुरक्षित तो हैं?
2: हाँ देवी, संभवतः कोई मकर है, भटकते भटकते इधर आ गया है।
1: चिंता ना करें, आसपास जाल लगे हुए हैं महाराज, आप तक कोई हिंस्र पशु नहीं पहुंच पाएगा, रक्षा का पूरा प्रबंध है। अरे, चूंकि महाराज कहाँ हैं?
2: वे चले गए हैं देवी।
1: कहाँ? नाव और केवट के बिना कहाँ चले गए?
2: नदी पर चलते चलते, पता नहीं कहाँ।
1: नदी पर चलकर? सिद्ध पुरुष थे वह।
3: वो तैरकर नहीं गए?
2: नहीं, कहते थे यहां तक ही वो मुझे रास्ता दिखाने आए थे, यहां से आगे मुझे अपना मार्ग स्वयं चुनना है।
3: महात्मा, चिंता न करें, भोर होते ही मैं आपको उस पार पहुंचा दूंगा। रात थोड़ी सी बची है, तब तक आश्वस्त होकर विश्राम करें। हमारा ये श्वान युगल नील और मणि आपको सुरक्षा देगा। मेरे वीर सैनिक हैं, सुरक्षा में कभी चूक नहीं करते।
2: क्या नाम बताया? नील, मणि। मेरे वेगवान सुदर्शन और स्वामी भक्त अश्व का नाम भी यही था।
1: महाराज, कुछ कहा आपने?
2: हाँ देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस श्वान युगल को नीलमणि नाम क्यों दिया?
1: हमारे यह है ना, मदपान के पश्चात किसी नरेश से कम नहीं होते। उज्जैनी के विश्व विश्रुत नरेश भर्तहरि के विषय में कहीं सुन लिया था कि नीलमणि उनके सर्वाधिक प्रिय अश्व का नाम नीलमणि है, सो जोश में आकर श्वान को नील और श्वानी को मणि संबोधन दे डाला।
2: अनुकरणीय नरेश।

0: इतना कष्ट क्यों कर रही हो? मुझे तो बस पार पहुंचाने की व्यवस्था भर कर दो।
1: महामना, आप हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। एक नया जीवन आपने हमें दिया है। अभी तक हम अपने आप को केवल पतित ही मानते रहे। एक ऐसा पशु जो मात्र इसलिए जीवित है कि वह मरना नहीं चाहता। जाने क्यों हम समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं। आपने तो हमारी जाति ही बदल दी, जैसे जन्म ही बदल गया, नया जन्म दिया। बस इतना मान और दे दें कि इस झोपड़ी के द्वार पर अन्न के कुछ दाने ग्रहण कर लें। ये उच्छिष्ट अन्न नहीं है, हमने बीज के साथ अपना स्वेद देकर उसे उत्पन्न किया है महाराज।
0: इस आतिथ्य के लिए मैं कृतज्ञ हूं देवी। मैं यदि अधिक समय और रुका तो संभवतः अपने पथ से दूर हो जाऊंगा, अतः अब आज्ञा दें। बंधु, मुझे उस पार पहुंचाने की कृपा करो।
1: महाराज, आधी घड़ी और ठहरे महाराज।
2: गृहिणी ने पति को सचेत कर संकेत किया तो वह पुनः सांटी उठाकर आंच पर सिके भुट्टे पूर्वज झाड़ने लगा। थोड़ी ही देर में गृहिणी ने दाने सूपड़े से फटक कर साफ किए और अतिथि के गमछे से गांठ बांध दिए। भ्रतहरि जब सुपच परिवार से विदा हुए तो गृहिणी और दोनों बच्चों की आंखों में आत्मीयता और कृतज्ञता के आंसू भर आए। डोंगी धीरे धीरे नदी की सतह पर आगे सरकती जा रही थी। भ्रतहरि का कुछ जैसे बालू का तट छूटता सा जा रहा था, लेकिन आगे भी ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें बुला रहा था।

0: अब मुझे चंद्रपुर पहुंचना है।
1: भृतहरि का अवलक्ष्य था चंद्रपुर। उन्हें बताया गया कि वहां चारुमित्रा है, उनकी कविताओं की प्रशंसिका, जिसने वसंत को प्रेरित किया था कि वह उनके संस्कृत काव्य को लोक भाषा में प्रस्तुत करे। विद्वानों के लिए लिखा गया यह काव्य लोक हृदय द्वारा ग्रहण किए जाने की एक तरह से पुष्टि होगी, कसौटी होगी उस काव्य की संवेदना की, एक परीक्षा। भृतहरि को लगा कि चारुमित्रा अपने भवन के झरोखों में खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
2: अनक गोरख गोरख गुरु गोरख, बस यहीं तक तुम्हें पहुंचाने का आदेश गुरु ने दिया था, अब आगे मार्ग तुम्हारा है। यदि भटके नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा भर्तहरि, जाग रहे हो ना?
0: जाग रहा हूं जोगी महाराज। तो बंधु विदा, कभी अवसर मिला तो पुनः तुमसे आकर मिलूंगा।
3: ये हमारा सौभाग्य होगा देवता।

चार महीने पीछे छूट गई है अवंती। इस बीच नागर जीवन से कोई संपर्क नहीं रहा। चंद्रपुर के व्यापारियों का संपर्क निश्चय ही उज्जैनी से होगा, कुछ समाचार मिलेंगे। इस बीच वहां क्या घटा, शुभ अथवा अशुभ? शायद रानी पिंगला का कोई समाचार मिले। महामात्य पूर्ण रथ निश्चय ही अत्यधिक चिंतित होंगे। कुमार विक्रम की उद्दंडता अवश्य बढ़ गई होगी। राजनीतिक षड्यंत्रों का ताना बाना बुना जा रहा होगा। राजदंड का जब भय ही ना रहे तो सर्वत्र अनियंत्रित स्वार्थ शीर्ष उठा लेते हैं। अनियंत्रित

0: और अराजक प्रजा।
1: भर्तृहरि, अवंती कातर है, वो तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें, तुम्हारी अवंती भर्तृहरि, तुम्हारी अवंती।
2: अलोक गोरख गोरख, राजा भले ही तुझे अटपटा लगी, पर मैं कह ही देता हूं कि तेरी उज्जैनी सो रही है अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर। भर्तृहरि, तू भी सो गया क्या? जाग, क्या अभी शेष नहीं हुई है? यहां से 2 दिन के रास्ते पर है चंद्रपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी का एकांतारी का 11वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। आज कारगिल विजय दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उनकी इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के हृदय में गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाता है, भारतीय सेना की गौरव गाथा का पर्व कारगिल विजय दिवस। बहनों, यह दिवस केवल एक तिथि नहीं है बल्कि यह भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट संकल्प, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन हमें उन अमर वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भारत माता का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। बहनों, सन 1999 में पाकिस्तान की सेना और उसके घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उनका देश श्रीनगर, लेह, राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना

करना था। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी मिली तब उन्होंने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मनों को खदेड़ने का संकल्प लिया। बहनों, कारगिल का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। हमारे सैनिकों को लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लड़ना पड़ा। वहां ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम अत्यंत ठंडा था, दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था और हर कदम पर मृत्यु का खतरा था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस और रणनीति का परिचय दिया। इस युद्ध में हमारे अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज हम श्रद्धापूर्वक उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। उनके साहस और बलिदान की गाथाएं सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। बहनों, जब भी कारगिल युद्ध का नाम लिया जाता है तब अनेक वीर योद्धाओं की याद आती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का वह अमर उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर भारतीय के मन में जोश भर देता है। उन्होंने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर विजय प्राप्त की और अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन अनुज नैयर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी तथा अनेक अन्य वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। बहनों, इन वीरों ने हमें सिखाया कि देश के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बहनों, भारतीय सेना केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य संकटों के समय भी सबसे पहले सहायता के लिए आगे आती है। कारगिल विजय दिवस हमें केवल वीरता की कहानी नहीं सुनाता बल्कि हमें अनेक जीवन मूल्य भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस, अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा हमें सहज रूप में नहीं मिली बल्कि इसके पीछे हजारों सैनिकों का त्याग और बलिदान छिपा है। हमें अपने सैनिकों की तरह ईमानदार, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला नागरिक बनना चाहिए। देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर युद्ध लड़ने का नाम नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, संविधान का सम्मान करना, समाज में सद्भाव बनाए रखना, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना और देश के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। आज इस कारगिल दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिससे भारत का नाम विश्व भर में गौरवान्वित हो। यही हमारी वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

साथियों। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं टीकाकरण कराएं जीवन को खुशहाल बनाएं के विषय में। जी हाँ बहनों, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके बचाव के उपाय बताना तथा समय पर टीकाकरण और जांच के लिए प्रेरित करना है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बीमारियों से घिर जाएं तो जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए बीमारियों से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है टीकाकरण। बहनों, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करती है। यह वायरस के कारण होती है और इसके कई प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी एक गंभीर संक्रमण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचाव के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है। समय पर लगाया गया

वाला टीका व्यक्ति को इस बीमारी से काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई, असुरक्षित रक्त चढ़ाने तथा संक्रमित माँ से नवजात शिशु तक फैल सकता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों का टीकाकरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं अपनाना, स्वच्छता बनाए रखना और जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। बहनों, भारत सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए निशुल्क टीके उपलब्ध कराता है। इन टीकों ने लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित बनाया है। इसलिए हमें न केवल स्वयं टीकाकरण करवाना चाहिए बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। बहनों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो समय पर उपचार लेना चाहिए और उपलब्ध टीकों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यदि हम सभी जागरूक बने तो हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। बहनों, एक स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, युवा ऊर्जावान होंगे और बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। टीकाकरण अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। स्वस्थ रहेगा हर परिवार, तभी बनेगा देश महान। हेपेटाइटिस को हराना है, जागरूकता का दीप जलाना है। टीकाकरण कराएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। बाघ है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो पर्यटन है, पर्यटन है तो समृद्धि है के विषय में। बहनों, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं बल्कि हमारी जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। बहनों, जब हम कहते हैं बाघ है तो प्रकृति है, तो इसका गहरा अर्थ है बाघ जंगल का सर्वोच्च शिकारी है। वह वन्य जीवों की संख्या को संतुलित रखता है। यदि बाघ जंगल में सुरक्षित रहेगा तो हिरण, सांभर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या भी नियंत्रित रहेगी। इससे वनस्पतियों का संरक्षण होगा, जंगल हरे भरे रहेंगे और पूरा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा। इसलिए बाघ का अस्तित्व केवल एक जीव का अस्तित्व नहीं बल्कि पूरे जंगल की जीवन शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति है तो पर्यटन है। बहनों, घने जंगल, स्वच्छ नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षी और वन्य जीवों की विविधता ही किसी देश की प्राकृतिक पहचान बनते हैं। जब लोग जंगलों में बाघों को देखने आते हैं तो वे केवल एक वन्य जीव नहीं देखते बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करते हैं। भारत के अनेक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य देश विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है और संरक्षण की भावना मजबूत होती है। पर्यटन है तो समृद्धि है। जी हाँ बहनों, पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं है बल्कि यह आर्थिक विकास का भी एक सशक्त आधार है। जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय भोजन, गाइड, फोटोग्राफी और अनेक छोटे बड़े व्यवसाय विकसित होते हैं। इससे गांव और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनता है। इससे बाघों का संरक्षण सीधे सीधे समृद्धि से जुड़ा हुआ है। बहनों, भारत विश्व के उन देशों में है जहाँ सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी जब हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बाघों को और उनके जंगलों को सुरक्षित रख सकें। आज भी बाघों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का सिकुड़ना, मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। यदि इन समस्याओं का समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां बाघों को केवल पुस्तकों और चित्रों में ही देख पाएंगी। इसलिए बहनों, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। हमें पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार, वन विभाग, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक सभी के संयुक्त प्रयास से ही बाघों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। याद रखिए, जंगल बचेंगे तो बाघ बचेंगे, बाघ बचेंगे तो प्रकृति बचेगी।

प्रकृति बचेगी तो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तब हमारा देश समृद्ध बनेगा। आइए इस विश्व बाघ दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, हरित और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जीवन की सफलता में गुरु की भूमिका, गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे।

गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान देते हैं, गुरु ही विष्णु है जो हमारे ज्ञान का पालन करते हैं, और गुरु ही महेश है जो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरु को बार बार प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन में गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। यह पर्व महर्षि देवव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की तथा अनेक पुराणों की रचना कर मानव समाज को ज्ञान का अमूल्य खजाना प्रदान किया, इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। बहनों, जीवन में सफलता केवल धन, पद और प्रसिद्धि प्राप्त करने का नाम नहीं। वास्तविक सफलता वह है जिसमें व्यक्ति ज्ञानवान, संस्कारी, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील और समाज के प्रति उत्तरदायी बने। ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। गुरु केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तब गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम असफल होते हैं तब गुरु हमें निराश होने से बचाते हैं और दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तब गुरु हमें विनम्र बने रहने का संदेश देते हैं। बहनों, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य रहा है। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में माता जीजाबाई और समर्थ रामदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को दिशा देने वाले गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानकर महान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। गुरु हमारे व्यक्तित्व के निर्माता होते हैं। वे हमारे भीतर अनुशासन, समय का सदुपयोग, परिश्रम, ईमानदारी, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। वे हमें केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में सफल होने का साहस भी देते हैं। बहनों, गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। यदि हम गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि गुरु चाहे वे हमारे विद्यालय के शिक्षक हों, हमारे माता पिता हों, या जीवन में हमें सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति हों, उनका सदैव सम्मान करेंगे। हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करेंगे।

0: बहनों, श्रावण मास का पावन महीना 30 तारीख से शुरू हो रहा है। यह महीना अपने साथ भक्ति, उत्साह और अनेक धार्मिक परंपराएं लेकर आता है। इस पवित्र मास में व्रत और फलाहार का विशेष महत्व होता है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्वादिष्ट और आसान फलाहारी व्यंजन, जो व्रत की शुद्धता के साथ साथ स्वाद का भी पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मखाना पनीर टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप भुने हुए दरदरे पिसे मखाने, 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर, 2 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया। घी सेकने के लिए सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर टिक्की बना ले। तवे पर थोड़ा घी डालकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेक ले। दही या फलाहारी चटनी के साथ सर्व करें। तैयार है आपकी मखाना आलू टिक्की। अब बनाते हैं नारियल कद्दू की मलाईदार सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप कद्दू के टुकड़े, 1/2 कप नारियल का दूध, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च, घी। घी में जीरा भूने, कद्दू डालकर पकाएं। जब कद्दू नर्म हो जाए तब नारियल का दूध डालें और 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। तैयार है स्वादिष्ट सब्जी। इसे आप समा के चावल या कूटू के आटे की पूड़ी के साथ गर्म गर्म खा सकते हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का। लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शायदा कुरैशी के गाए मल्हार गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायदा कुरेशी, रजनी अर्जेरिया और राजीव कुमार रावत के गाए मल्हार गीत। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में इकबाल हुसैन वंदनवाजी और साथियों की गाई कव्वाली। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचे गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: अंतराल का समय समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज यानी 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में देश इस महान दिन की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। तो आइए श्रोताओं, हम भी इस विजय को मनाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शहीद 23 मार्च 1931। फिल्म का ये गीत स्वर थे उदित नारायण, भूपेंद्र सिंह और वीर राजेंद्र के। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत था आनंद राज आनंद का। लीजिए अब कार्यक्रम में अगला गीत पेश है, कारगिल विजय दिवस पर।

श्रोताओ, गीत आप सुन रहे हैं फिल्म देश के दुश्मन से। स्वर है महेंद्र कपूर और साथियों की। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है सोनिक ओमी का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं तथा बावड़ियों का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। अब भूजल पुनर्भरण के लिए बोरवेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में तालाबों और अमृत सरोवरों को मिले नए जीवन पर कहा,
1: साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। हाल की बारिश से पारंपरिक मार्ग को हुए नुकसान के कारण आज जम्मू से अनंतनाग जिले के पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 4,00,000 से अधिक श्रद्धालु समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों को नमन करता है जिनके

0: असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय को संभव बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवाड़ी जिले में संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री यादव अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कुल 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 4 इंच या इससे अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक

0: सामाजिक संस्थाएं हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
0: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने

0: रोशन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय

0: गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत

0: शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी जबलपुर का।

मुस्कान सुनने वाले सभी बच्चों को स्टूडियो में उपस्थित बच्चों और प्रीति दीदी की जय हिंद। साथ ही सभी बच्चों को दीदी का ढेर सारा प्यार। हम जानते हैं हमेशा की तरह आज भी हमारे प्यारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि दीदी आज हमारे लिए क्या जानकारी देने वाली हैं। तो बच्चों, आज बात कारगिल विजय दिवस की। बच्चों, आज यानी 26 जुलाई को हम सब विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे जो बाल साथी ये नहीं जानते कि इसे क्यों मनाया जाता है, उन्हें बता दें कि जब पाकिस्तान ने सन 1999 में लद्दाख के उत्तरी कारगिल ज़िले की पर्वतीय चोटियों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, तो भारत ने भी उनकी इस कोशिश को असफल करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी सीमा से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। और हमारी साहसी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय पर्वत सीमा से भागने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल की सभी चोटियों को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और एक बार फिर पर्वतों पर तिरंगा फहरा दिया। तब से 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को कारगिल विजय दिवस के बारे में पता चल गया होगा और वे भी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। बच्चों, अब चलते हैं हमारे अगले क्रम आओ जाने की ओर, जिसमें आज हम एक और दिवस के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में, जिसे 28 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, तो हम सबको उसे संरक्षित करना चाहिए, उसे सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग यदि किफ़ायत से नहीं किया गया तो उन्हें ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर वो समाप्त हो गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। सोचो बच्चों, अगर पीने का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम क्या पृथ्वी का हर प्राणी, पेड़ पौधे, इन सब के लिए पानी कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही प्रकृति की हर चीज़, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे जीवन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। अगर इनमें से किसी भी तत्व की कमी हुई तो हमारा जीवन

0: प्रभावित होगा। बच्चों, इसी बात के प्रति सबको जागरूक करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, केवल इस बात को कहने से कुछ नहीं होगा, हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम प्रकृति की हर चीज़ को संरक्षित करें, उसे सुरक्षित करने का प्रयास करें। साथ ही सभी को इस बारे में जागरूक भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे इस प्रकृति संरक्षण दिवस पर ये संकल्प तो लेंगे ही, साथ ही साथ खुद इन बातों का पालन भी करेंगे और लोगों को चीज़ों के दुरुपयोग के प्रति सचेत भी करेंगे। बच्चों, अब चलते हैं हमारे आज जुड़ रहे बच्चों के पास और उनसे जानते हैं कि आज वो हम सबके साथ क्या साझा करेंगे हमारे अगले क्रम बच्चों के मुख से में। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन साथी जुड़ रहा है, हम उनका नाम जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं और ये जानते हैं कि वो हमसे क्या साझा करने वाले हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम आशी सैन है।
0: आशी, क्या लेकर आई हो आशी?
1: एक पोयम।
0: पोयम, क्या नाम है पोयम का?
1: मेरी भावना।
0: मेरी भावना, सुनाओ।
1: अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईश्वर भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भव जगत में मेरे सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करुणा शीत रहे, दुजन क्रू कुमारगत पर छूम नहीं मुझको आए, सम्यक भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणीति हो जाए, गुरुजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, हो नहीं कृतल घन में कभी मैं द्रोह ना मेरे और राय, गुण ग्रहण का भाव रहे, नीत दृष्टि ना दोषों पर जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आया जाए, लाखों वर्षों तक जियो या मित्र राज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पर दे पाए, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रख रहे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द ही नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब योगवीर हृदय से देशोन्नति रथ कह रहे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे।
0: बहुत ही अच्छी कविता हमको आशी ने सुनाई है। अब और कौन क्या तैयार करके आया है?
2: हाँ, मैं एक गीत तैयार करके आए हैं।
0: पहले बेटा आप सब अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम है अंशिका सोनी।
3: आकांक्षा एकेवा।
4: श्रद्धा रैदास।
0: तो तीनों बच्चियां मिलकर एक गीत सुना रही हैं, सुनाओ।
5: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शानिया की जाने ताहुदाने, आज इंद्रनुष के बाण में उतार दो, आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्व शक्तिमान है, मन की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का।

0: बहुत ही अच्छा गीत इन्होंने हमें सुनाया। बेटा सब लोग एक बार फिर से अपना नाम बता दो।
1: मेरा नाम है अंशिका सोनी।
2: मेरा नाम है आकांक्षा केवट।
3: मेरा नाम है श्रद्धा रहदास।
0: अंशिका, आकांक्षा और श्रद्धा ने बहुत ही अच्छा भजन हमें सुनाया है। हमें लगता है कि हमारे श्रोता बच्चों को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। क्या नाम है बेटा आपका?
4: मेरा नाम अनन्या अहरवार है। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ।
0: अनन्या, हम सबके लिए भजन तैयार करके आइए, सुनाओ।
4: वो कानब तो मुरली की मधुर सुना दो ता, वो कानब

0: मधुर सुना दो ता।
1: अनन्या ने बहुत ही सुंदर भजन हमें सुनाया है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है?
2: कविता।
1: कविता, पहले बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: परी अहिरवार मेरा नाम है, मैं एक कविता लेके आई हूँ।
1: अब परी हम सबको कविता सुनाएगी, सुनाओ।
2: पेड़ हमें छाया देते हैं और यही देते हैं आम, इनसे हरियाली धरती पर, इनसे सारी चहल पहल, गंध इन्हीं से, स्वाद इन्हीं से, रंग बिरंगे फूल इन्हीं से।
1: बहुत ही अच्छी कविता थी, पेड़ों से जुड़ी हुई ये कविता थी। पेड़ हमें हरियाली तो देते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को सहेज कर रखना है, उन्हें काटना नहीं है और कटने से बचाना है, और नए नए पौधे रोपने हैं ताकि हम नए पेड़ों को तैयार कर सकें। अब आगे हमारे साथ और कौन जुड़ा हुआ है? बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम है अंशिका प्रजापति।
1: अंशिका क्या तैयार करके आई है?
3: कविता।
1: कविता सुनाओ।

0: बच्चे हैं।
1: भारत प्यारा देश हमारा, अभी प्रकृति की ऊपर कविता सुनी थी इससे पहले हमने, और अपने देश के प्रति। हमारा देश रंग बिरंगी चीज़ों से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा हमारा देश भारत देश है। और इसी तरीके से ये हमारे बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे बच्चे। अब और हमारे साथ कौन है, क्या सुनाएगा?
2: मेरा नाम प्रियांशी चौधरी है, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। किनारे केवल एक लड़का फरीद और उसकी माँ थी। जहाज के यात्री और नाविक को बचाने के लिए नौका ले जाना जरूरी था। किनारे पर कुछ नौकाएं थीं। फरीद ने पूछा, माँ क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमी बच सकते हैं। बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक के पिता नाव लेकर समुद्र में गए थे। एक मात्र उसका यह सहारा था। अगर इसे भी कुछ हो गया तो इसे ना भेजूं तो ना जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। फरीद शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा। उसने डूबते हुए जहाज को बचा लिया। उन्हीं लोगों में उसका पिता था। पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बालक ने पूछा, पिता आप यहाँ कैसे? हमने तो समझा कि नाव डूबा ले गई आपको। मैं डूबा नहीं था, मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचा लिया। आज यह जहाज ही डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया, मुझे तुम पर गर्व है। अपहरित की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया है। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की भी जान बच गई।
1: बहुत अच्छी कहानी हमें प्रियांशी ने सुनाई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय पढ़ने पर किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है हमारे किसी अपने को भी इसी तरीके से मदद की ज़रूरत पड़े और समय मिलने पर उसे भी मदद मिल पाए। हाँ, तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम समीक्षा कुशवाहा, मैं आपके लिए भजन तैयार करके आई हूँ।
1: अच्छा, तो समीक्षा भजन लेके आई है, सुनाओ बेटा।
3: श्री राम।

0: कौशल चंद दशरथ नंदन।
1: बहुत सुंदर भजन अभी हमने समीक्षा से सुना। अब आगे और कौन क्या सुना रहा है? बेटा आप अपना नाम बताओ सबसे पहले।
2: मेरा नाम मुस्कान साहू है, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ।

0: बहुत ही अच्छी कविता हमें मुस्कान ने सुनाई है कि सभी हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं, चाहे हमारी भाषा अलग हो, बोली अलग हो, रंग रूप अलग हो, पहनावा अलग हो, पर हम सब आखिर में एक ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम साक्षी प्रजापति है। मैं कहानी बोल रही हूँ।
2: किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्चें रखी थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चक्कर देखा। मिर्च बहुत चरपरी थी, उसने मिर्च फेंक दी। उसके बाद बंदर ने दर्पण को उलट पुलट कर देखा, तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ी। सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक पड़ी। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया, उसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह तो बड़े काम की चीज है, इसके सामने जो भी आता है वह तो इसमें दिखाई देने लगता है। उसने थैले में काया गले में लटकाया और दर्पण को थैले में रख लिया। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया। रास्ते में उसे पेड़ पर एक मुर्गा बैठा हुआ मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले? बंदर ने अपनी अकड़ में मुर्गे की बात अनसुनी कर दी। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला। भालू ने बंदर को अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, क्या बात है, आज तो इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो? भालू की बात सुनकर बंदर ने कहा, जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या करना। भालू ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते। बंदर बोला, अरे तुम जैसे को तो मैं अपने थैले में बंद कर कर रखता हूँ, चलो भागो यहाँ से। भालू और बंदर का झगड़ा सुनकर वहाँ पर एक शेर आ गया। शेर ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। भालू ने बताया कि यह बंदर तो अकड़ रहा है, बोलता है कि मेरे जैसे को तो थैले में बंद रखता है। भालू की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। वह बंदर को डांटने लगा और बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू को ही नहीं शेर को भी थैले में बंद है, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। बंदर ने दर्पण निकाल कर उसके सामने कर दिया। दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अपनी यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डरकर वहाँ से भाग गए। चतुर बंदर शान से जंगल में रहने लगा। अब उसे किसी का डर नहीं था।
0: बच्चों, अब वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने आसपास सफाई रखें, प्रकृति की सभी चीज़ों का संरक्षण करें, पानी बचाएं, पेड़ों को हरा भरा रखें, नए नए पौधे लगाएं, और सभी अपना भी ध्यान रखें और अपने घर के बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, सबका ध्यान रखें।

खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभ भाव के साथ प्रीति दीदी को मुस्कान से इजाज़त दीजिए। सभी बच्चों की तरफ से और प्रीति दीदी की तरफ से आप सभी को जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम, योगदान था आकाशवाणी जबलपुर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। सुमधुर आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत लिखा है अशद भोपाली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत, स्वर थे लता मंगेशकर के। गीत लिखा था असद भोपाली ने और स्वर थे, संगीत था राम लक्ष्मण का। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ

अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। बारिश के चलते पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। और भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 5:02 पर आप सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। 5:33 पर फिल्म संगीत और 6:00 पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम और शाम 7:30 ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें आज विषय है सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य, विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वप्निल दुबे। रात 8:00 सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की, इसमें विषय है पीएम श्री योजना। रात 9:30 आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज कलाकार होंगी विदुषी वर्षा अग्रवाल, सुनिएगा आप इनका संतूर वादन। श्रोताओं, ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर अब ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5:00 इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच ये प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से चल रहे इस

विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। एक पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। साथियों, आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय जिन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की बात में हमारा आज का विषय रहेगा कारगिल विजय दिवस। सोशल साइट्स का उपयोग कितना लाभकारी और कितना हानिकारक पर होगी चर्चा। जीवन आलोक का हमारा आज का विषय रहेगा पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे कदम बढ़ाएं। साथ ही क्रम वार्ता के अंतर्गत सुनेंगे जरूरी जानकारी। कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए होंगे कुछ मधुर गीत। साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के विशेष उपलक्ष्य कारगिल विजय दिवस पर जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय और देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान तथा देशभक्ति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सन 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कठिन परिस्थितियों में साहसपूर्वक युद्ध लड़ा और 26 जुलाई 1999 को सभी महत्वपूर्ण चौकियों पर पुनः तिरंगा फहराया। यह विजय भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर युद्ध लड़ा। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे था, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन

मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार तथा अन्य अनेक वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत पराक्रम से पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उनकी वीरता आज भी प्रत्येक भारतीय को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। कारगिल के वीर सैनिकों का जीवन हम युवाओं को यह सिखाता है कि देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए तथा सेना बलों का सदैव सम्मान करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस केवल एक विजय का उत्सव नहीं बल्कि उन अमर वीरों के प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा की। हमें उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा लेकर एक जिम्मेदार, अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं सोशल मीडिया का उपयोग कितना लाभकारी कितना हानिकारक। दोस्तों, आज का युग इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का युग है। सोशल साइट्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन इनका अत्यधिक या गलत उपयोग कई समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि सोशल साइट्स का उपयोग कितना सही है और कितना गलत। साथियों, सोशल साइट्स का सही और संतुलित उपयोग अनेक प्रकार से लाभदायक है। इनके माध्यम से हम देश दुनिया की ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी,

और शैक्षणिक सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। व्यवसायी अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। परिवार और मित्र चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनसे आसानी से संपर्क बनाए रख सकते हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने, प्रतिभा दिखाने और नए कौशल सीखने में भी सोशल साइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां सोशल साइट्स के अनेक लाभ हैं, वहीं इनके दुष्प्रभाव भी कम नहीं हैं। इनका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी करता है और पढ़ाई तथा काम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई लोग झूठी खबरें, अफवाहें और भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा होता है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी अकाउंट, निजी जानकारी की चोरी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया का उपयोग मानसिक तनाव, अकेलेपन और मोबाइल की लत का कारण बन सकता है। सोशल साइट्स का उपयोग सीमित समय तक करना चाहिए। किसी भी समाचार पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और सकारात्मक तथा उपयोगी सामग्री ही साझा करनी चाहिए। सोशल साइट्स ना तो पूरी तरह अच्छी है और ना ही पूरी तरह बुरी। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम सोशल साइट्स का उपयोग संयम, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें, तो वे शिक्षा, ज्ञान, रोजगार और संचार का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इसीलिए हमें सोशल साइट्स का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि हमें उनके लाभ प्राप्त हों और हानियों से हम बच सकें। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीवन आलोक के हमारे आज के विषय की। दोस्तों, जीवन एक निरंतर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य होती है। गलतियां करना असफलता नहीं है, बल्कि उनसे कुछ ना सीखना वास्तविक असफलता है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए हमें पुरानी गलतियों को याद करके पछताना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। गलतियां हमें हमारे अनुभवों से परिचित कराती हैं। वे बताती हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। यदि हम अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो भविष्य में वही गलती दोबारा करने से बच सकते हैं। महान वैज्ञानिकों, नेताओं और सफल व्यक्तियों ने भी अनेक बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर नई शुरुआत की और अंततः सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक है। उसके बाद उसके कारणों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आत्मविश्वास, धैर्य, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। समय का सदुपयोग, अनुशासन और निरंतर प्रयास भी सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में भी गलतियां होना स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आना, पढ़ाई में लापरवाही करना या समय का सही उपयोग ना करना जैसी गलतियों से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए। नियमित अध्ययन, अभ्यास और आत्म मूल्यांकन से सफलता अवश्य मिलती है। पुरानी गलतियां हमारे जीवन की शिक्षक होती हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। हमें बीतते हुए समय पर पछताने के बजाय वर्तमान में मेहनत करनी चाहिए और भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता और प्रगति का मार्ग है। साथियों, समय हो गया है एक और गीत सुनने का।

दोस्तों, अभी आपने सुना यह गीत। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए अपनी दोस्त मानवी श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा मित्रों का कार्यक्रम युववाणी। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम लेंगे छोटा संतराल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?

0: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
0: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या,
0: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,
8: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
7: चलो,
6: कहाँ
7: एडमिशन कराने हैं?
9: खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अंतराल का समय पूरा हुआ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा का। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं 1999 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं से। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और साथियों ने। आर किरण के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: श्रोताओं, अभी ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ हैं से कविता कृष्णमूर्ति हरिहरन और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने लिया है 1982 में रिलीज हुई फिल्म नमक हलाल से।
1: अरे अरे अरे ना ना ना, ना।

नमक हलाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है अनजान साहब ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म नाजायज से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और रूप कुमार राठौर।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत, 2005 में रिलीज हुई फिल्म बरसात से।

0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम कंतम की 2005 में रिलीज हुई फिल्म बरसात के दिन आए से। आप सुन रहे थे इस गीत को, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण की जोड़ी ने। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और अब समय है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: अंतराल का समय पूरा हुआ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कचरा प्रकृति के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। उन्होंने प्लास्टिक के उचित निस्तारण पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिंह ने कहा कि कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रदेशव्यापी अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत आज राजधानी में रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें करीब 6,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर अनाहत सिंह को बधाई दी। वह विश्व जूनियर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी भी बन गई हैं। और मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा का। श्रोताओं, आज है 26 जुलाई अर्थात कारगिल विजय दिवस। यह वह गौरवपूर्ण दिन है जब वर्ष 1999 में भारतीय सेना के अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम

पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर एक बार फिर तिरंगा शान से फहरा दिया था। ऑपरेशन विजय की सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास, एकता और देशभक्ति की विजय थी। आज का यह फिल्म संगीत कार्यक्रम उन सभी अमर वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दिया। आनंद लीजिए इस गीत का, फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज में।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर से। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। निर्देशक जेपी दत्ता ने सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं को अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील तरीके से इस फिल्म में चित्रित करने का सफल कार्य किया है। संदेश आते हैं केवल एक गीत नहीं बल्कि सीमा पर तैनात हर सैनिक के मन की आवाज़ है।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत है 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है, संगीत है मदन मोहन का और इस गीत को लिखा है कैफ़ी आज़मी ने। आपको बता दें ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी थी। कर चले हम फिदा इस गीत को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रेरक देशभक्ति गीतों में से एक माना जाता है। कैफ़ी आज़मी की ये पंक्तियाँ आज भी हर भारतीय को भाव विभोर कर देती है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राजी से। आपको बता दें, ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 2018 में। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, बोल गुलजार के हैं और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय की जोड़ी ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना।

प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस निर्माता अधिकार स्वामी एग्रीगेटर कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस के आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों एवं आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सूचना समाप्त हुई।

2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म केसरी से।

0: तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।
1: बी प्राक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे हैं 2019 में रिलीज हुई फिल्म केसरी से। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है आरकू ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है 1992 में रिलीज हुई फिल्म रोजा से। इस गीत को गाया है हरिहरन ने, बोल है पी के मिश्रा के और संगीत है ए आर रहमान का।

सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य

समस्या, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत है 1965 में रिलीज हुई फिल्म शहीद से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया है प्रेम सोनी ने।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म चक दे इंडिया से सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज में गीत है जिसे लिखा है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान की जोड़ी ने।

आओ, इन वाक्यों को सुन के आप पहचान गए होंगे इस गीत को। ये गीत हमने लिया है 1970 में रिलीज हुई फिल्म पूरब और पश्चिम से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में गीत है जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया कल्याण जी आलम जी की जोड़ी ने।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे हैं 1965 में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर आजम से। मोहम्मद रवि की आवाज में ये गीत है, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और संगीत दिया है हंसराज बहल ने।

श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म लक्ष्य से शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। अब हम लेंगे छोटा सा अंतराल।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब से कुछ ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नज़दीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की

0: बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बनिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए आपको पहले आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें चर्चा का विषय होगा एग्री स्टार्टअप एप्स, और साथ ही आप सुन सकेंगे बुंदेली समाचार। 7:30 पर आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसका विषय होगा सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वप्निल दुबे। रात्रि 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, और 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म

संगीत का कार्यक्रम और 9:30 पर सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें हम आज आपको सुनवाएंगे कलाकार विदुषी वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:30 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरितमानस गान और 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कृषि चर्चा। चर्चा का विषय होगा खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर साक्षी सिंह। कल प्रातः 7:20 पर सुनिएगा नमस्कार भोपाल, जिसमें बातें होंगी समाचार पत्रों से, गाने होंगे नए पुराने, समय के साथ कल आज और कल नगर की बातें। 8:30 पर सुनिएगा सुरमई सवेरा कार्यक्रम और 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम आईना और 10:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप सुन सकेंगे गीत सागर कार्यक्रम और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे माधव गुडी। आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। कल प्रातः 11:00 आप सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने, और 12:00 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम संग्रहालय से और 1:00 हम आपको सुनवाएंगे स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर आप सुन सकेंगे युवा मित्रों का कार्यक्रम युववाणी, योगदान आकाशवाणी भोपाल का होगा। कल शाम 6:00 आप सुन सकेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम और रात्रि 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
6: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो। क्या
9: आरबीआई कहता है?
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी में 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने विक्रम 1 के लॉन्च होने को लेकर कहा कि
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी।
0: प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि देश के लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
1: मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़े हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा,
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है।
0: भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर सेवा संबंधी मामलों पर चर्चा की। डॉ. सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रतिनिधिमंडल में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने प्रशासनिक सुधारों पर सरकार द्वारा निरंतर ध्यान दिए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए यह बात कही। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी में लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन और 19 करोड़ 98 लाख की लागत से तैयार

0: 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन सहित लगभग 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 54 करोड़ की लागत से लगभग 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां गीता भवन और सांदीपनी विद्यालय की स्थापना सहित क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा देगी। इसके माध्यम से निवाड़ी जिले के सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा।
1: सिमरा में सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा की और निवाड़ी में एक आपने का सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने फिर निर्णय किया, मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चालू की जाएगी और गौशाला निर्माण की बात भी आपने कही, मैं गौशाला बनाने की भी घोषणा करता हूँ। विधि महाविद्यालय और MBA भी खोलना चाहिए तो भविष्य में युवाओं को पढ़ने के लिए रोजगार परक शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज भी और MBA भी खोला जाएगा।
0: कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनंदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। 662 गांवों में 60,000 से अधिक जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की गई है। 500 से अधिक बंद पड़े बोरवेलों को पुनर्भरण शॉफ्ट में परिवर्तित किया गया है। 600 से अधिक इंजेक्शन कुओं को 1,700 से अधिक मिनी परकुलेशन टैंकों से जोड़ा गया है और 2,500 से अधिक जल निकायों को जियो टैग किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और शियर जोन सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 निम्न दबाव क्षेत्र भी बने हुए हैं। इन्हीं मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना अपर कलेक्टर न्यायालय राजस्व प्रशासन ने पूरे प्रदेश में प्रकरण डिस्पोजल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है। झाबुआ जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज ग्राम पंचायत खेड़ी नवापाड़ा में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम और नगर सुरक्षा समिति सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भाग लिया। आगरमालवा जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज ग्राम साबनी के पास सड़क दुर्घटना में कार में सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बच्चों और महिलाओं सहित 6 अन्य घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 7:21 हो चुके हैं। लीजिए

ग्राम सभा सुनवे वाले सभी किसान भैया हरों को और बिन्ना हरों को खूब स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें अपनी रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम। कैसे का हाल चाल है भैया हरों, और खेती किसानी के काम काज कैसे चल रहे हैं? सबकी तबीयत पानी सब नौनी है ना, और पशु

0: ग्राम सभा सुनवे वारे सभी किसान भैया हरों को और बिन्ना हरों को खूब स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें अपनी रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम जय सीताराम। कैसे का हाल चाल है भैया हरों, और खेती किसानी के काम काज कैसे चल रहे हैं? सबकी तबीयत पानी सब नौनी है ना, और पशुधन भी उम्दा हुई है। जैया हम कुशल मंगल आपकी कामना करत हैं। और भैया हरों देखो आज है रविवार को देना, और आज ग्राम सभा में जम है हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम की गम्मत। तो भैया बिल्कुल नहीं भूलने हैं आज हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम 7:30 से 8 बजे तक अनके लाने आप जरूर सुनने हैं। और हेलो ग्राम सभा को जो ए बार को विषय है वो है सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य, और ए के लाने आपके प्रश्नों के उत्तर और समाधान के लाने विशेषज्ञ उपस्थित रहे हैं। डॉक्टर स्वप्निल दुबे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, वे रहे हैं अपने संगे। फोन नंबर आप नोट कर लें 0755-266-0902 और 266-0903। तो भैया हरो 7:30 से 8 बजे तक आप फोन लगा सकते हैं सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य के लाने, और सुन सकते हैं आप अपनो मनपसंद कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और भैया हरो देखो कह लग गओ है बस कार्य को टाइम, अषाढ़ सोई लग गओ है। कहत नहीं है जित की बूंद बचाइयो उत की हस धरती हसत है। तो खेत रहिए हरे भरे तो घर रहे हैं भरे भरे। तो भैया बहना हरो बरखा के दिन तो चल ही रहे हैं, बदरिया सोई घिर आई है, धरती भी सोई महकन लगी है, और किसान के मन नयास जग गई है। हम फिर याद दिला दें कि बरखा को पानी के अपन के जतन करने हैं और ओखे अपन के जोड़ के रखने हैं। हर बूंद बहुत कीमती है, खेतन में अपन के अच्छे मजबूत मेड़ बांधने हैं, तल तलैया अच्छे से अपन के सुधार लेने हैं, कुआं तालाब सुई साफ कर लेने हैं, छत को पानी टंकी को या सोखता को अपन को ओमे अपन के अच्छे से ने बचा के सुई धरने हैं। पानी बचे भैया हरो के तो तोई का हु है, धरती हरी भरी हु है, मुस्कुरा है और जी है। कहत है ना बूंद बूंद से घड़ा भरत है। तो जब बात ऐसे ही नहीं कही गई है, पानी बचावे के लाने में भी जा चीज लागू भई है। और आज की बचाई बूंद भैया हरो कल सूखों में संजीवनी बन सकत है। और भैया बहना हरो जो बरखा के जो दिन होते हैं वे धीरे धीरे दबे पाँव बीमारी की भी आमद दिखाते हैं। तो अपन के बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ रखने हैं कि अपन के गंदे पानी से दूर रहने हैं, मक्खी मच्छरों से दूर रहने, और तनक अगर आपके लगे जाड़ो जुड़ो सो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने। एक बात और कह बीमारी बात रही भैया हरो, एक नौजवानों आ गए है, नई खेती के तरीके हो गए हैं, हल बैल और ट्रैक्टर से हिम्मत नहीं हुए, अब मोबाइल ड्रोन और मौसम की सही जानकारी से भी अब अपन तरक्की कर सकते हैं। एग्रो स्टार्टअप भी ऐसा ही एक बहुत अच्छी तकनीक है। तो एग्री स्टार्टअप किसानन की मदद करत है, कहाँ अच्छो बीज मिल है, कहाँ अच्छी खाद डालने हैं, सिंचाई कब करने हैं, कौन सी दवाई सही रहे है, फसल कहाँ अच्छे दाम में बिक है, जैया सब चीज़ की खूब अच्छी सोई जो जानकारी है वो अपन के एग्री स्टार्टअप से मिल सकत है। एमें लागत घटत है भैया हरो, मेहनत कम लगत है और आमदनी सोई बढ़त है। और हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, वे नव कारोबार भी शुरू कर सकत हैं, तो अपने गाँव में अपनो रोजगार पैदा कर सकते हैं। अब खेती मजबूरी नहीं भैया हरो, बल्कि समझदारी और तरक्की को जरिया भी सोई बन सकत है। तो बरखा की हर बूंद बचाने हैं, अपन स्वास्थ्य संभालने हैं और नई तकनीक अपना के खेती को लाभ को धंधा बनाने हैं। तो अब टाइम हो रहा है बुंदेली समाचारन को, तो एक अंतराल के बाद सुनत है बुंदेली समाचार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। बुंदेली समाचार।
0: नमस्कार, बुंदेली समाचारन के संगे मैं हूँ डॉक्टर रानी रैकवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहो है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीति सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करत भय उन्हें कही कि जा दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलात है और हर भारतीय को एमे गर्व होत है। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त करो है कि देश के कई लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ के प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान पे चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के जल संरक्षण के लाने कार्यों को उल्लेख करत भय सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए गए हैं, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को सवारो गए हैं। उन्होंने कही कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनानो आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री को पदभार ग्रहण करो श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति जापत पे भई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्य

0: कार्यान्वयन को आकलन करने के लाने शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने जो जिम्मेदारी सौंपने के लाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार भी व्यक्त करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी में लगभग 193 करोड़ रुपया की लागत से बनने वाले विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण करो, जिनमें 25 करोड़ 63 लाख रुपया की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन और 19 करोड़ 98 लाख की लागत से तैयार 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन सहित लगभग 44 विकास कार्यों को लोकार्पण व 84 करोड़ की लागत के लगभग 15 विकास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने इत गीता भवन और सांदीपनी विद्यालय की स्थापना सहित क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं भी करी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में दूध को उत्पादन 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचावे को लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा दे है, जिसके माध्यम से निवाड़ी जिले के सैकड़ों गाँवों को लाभ मिले और हर खेत तक सिंचाई की सुविधा को विस्तार हुई है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ को वितरण करोगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जुलाई को उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राज्य स्तरीय महर्षि संदीपनी गुरु पर्व कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री गीता भवन में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के संगे विभिन्न विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण भी करो जाए है। संगे शिक्षा, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करो जाए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पे अनाहत सिंह को बधाई दी। वे विश्व जूनियर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी भी बन गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहो है कि ऐसे युवाओं के बीच स्क्वैश की लोकप्रियता और बढ़ है। और अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बनुभव है। अगले 24 घंटा के लाने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश को अलर्ट जारी करोगा है। उतई राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के संगे हल्की से मध्यम बारिश होवे के अनुमान जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और शियर जोन सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 निम्न दबाव क्षेत्र भी बने हुए हैं। इन्हीं मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को सिलसिला जारी रहने की संभावना बनी है। आज सीहोर जिले के कई हिस्सों में बारिश भई। जिला भू अभिलेख विभाग ने बताया है कि जिले में 1 जून से अब तक औसत 17.77 इंच वर्षा दर्ज करी गई है। तो मौसम समाचार के संगे बुंदेली समाचार भय समाप्त। नमस्कार।
1: बुंदेली समाचार।

0: नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य, और आप अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं सीधे फोन लगाकर स्टूडियो में। आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ उपस्थित है, डॉक्टर स्वप्निल दुबे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है। फोन नंबर आप एक बार फिर नोट कर लीजिए 07552660902, और आप इन फोन नंबर पर हमें बात कर सकते हैं। समय याद रखिएगा 7:30 से 8 बजे के बीच, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य आज की हेलो ग्राम सभा का विषय है। तो तब तक आपके फोन आते हैं, तब तक हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञ से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, राम राम।
1: सभी किसान भाइयों को राम राम।
0: सर, हम जैसा देख रहे हैं खरीफ फसलें अभी समय लगी हुई हैं और खरपतवार भी उनमें बहुत ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता बन गई है, तो अगर हम बात करें तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है?
1: खरीफ मौसम में हम देखते हैं कि खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है, और यदि हम खरीफ फसल चाहे सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर, धान सभी की बात करें, तो इसमें यदि हम खरपतवारों को नियंत्रण नहीं करते हैं तो इससे हमारी पैदावार में जो है उत्पादन में कमी आती है। लगभग 15% से 20% तक उत्पादन कम हो जाता है, और जैसा सभी किसान भाई जानते हैं जैसे ही हम फसल की बुआई करते हैं तो फसलों का अंकुरण कम से कम 5 से 7 दिन बाद होता है, जबकि खरपतवार पहले दिन से ही खेत में आ जाता है।

0: और खरपतवार के खेत में आने से वो पानी के लिए, वो खाद के लिए, वो प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है और फसल और खरपतवार के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इसलिए खरीफ की फसलों में खरपतवार का नियंत्रण कम से कम 12 से 15 दिन 20 दिन की अवस्था जो रहती है बड़ी क्रांतिक होती है। इस समय खरपतवारों का नियंत्रण करना जो है बहुत आवश्यक है। यदि खरपतवारों का नियंत्रण नहीं होता है तो फसल की बढ़वार कम होती है और उसके उत्पादन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है और अच्छा उत्पादन मिले तो हमारे किसान भाई बहुत सारी जानकारियाँ भी चाहेंगे। सोयाबीन एक प्रमुख फसल है खरीफ की, और इसमें खरपतवार कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: खरीफ फसल या सोयाबीन की हम बात करें तो इसमें दो तरह के खरपतवार आते हैं। एक तो सकरी पत्ती का खरपतवार आता है जिसको हम जो है दूब घास कहते हैं या मोथा कहते हैं, ये सकरी पत्ती में होते हैं। चौड़ी पत्ती में जो है हमारा पत्थर चटा है, कनकौआ है, दूधी है, वन मकोए है, सफ़ेद मुर्ग है, ये हमारे चौड़ी पत्ती। तो हमारे सोयाबीन की फसल में सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार आते हैं और इनका नियंत्रण करना जो है बहुत आवश्यक होता है।
1: बिल्कुल, हम आपसे आगे भी चर्चा रखेंगे। और हमारे साथ हमारे पहले जो हैं वो कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, हेलो ग्राम सभा, लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है। तो हम बात कर रहे थे सोयाबीन की फसल में। जी हेलो ग्राम सभा, हेलो ग्राम सभा।
2: जी रानी जी, राम राम।
1: राम राम भैया, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं ग्राम गौर जामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ।
1: विपिन भैया कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे
1: सागर
2: हैं?
1: का कैसा मौसम चल रहा है?
2: सागर का मौसम अभी तो मैम गर्मी हो रही है काफी, धूप भी निकलती है दिन में। तो
1: बारिश वारिश हो रही कि नहीं हो रही? आसार लग
2: नहीं, बारिश तो अभी तीन चार दिन से तो नहीं हुई, यहाँ थोड़ी बहुत परसों हुई थी शाम को 2-5 मिनट के लिए, बाकी वैसी बारिश तो नहीं हो रही है।
1: चलिए तो भाई आज क्या प्रश्न है आपका?
2: जी मेरे दो सवाल थे, पहला आज सोयाबीन का विषय है तो सोयाबीन के बारे में भी जानना चाह रहा था, और एक सवाल ये था कि पहला मैं अरहर के बारे में जानना चाह रहा था कि अरहर की फसल के लिए खरपतवार नाशी कोई दवा हो तो उसके बारे में जानना था। और दूसरा सवाल ये था कि सोयाबीन में देखा जाता है कि पीलापन की समस्या होती है, अभी तो नहीं है लेकिन आगे चल के आने लगती है जब फसल 1-1.5 महीने की होती है, तो उसके लिए हम पहले से क्या मतलब इंतजाम कर सकते हैं?
0: बहुत ही दोनों आपके विभिन्न कटारे जी आपने जो प्रश्न पूछे बहुत ही समसामयिक हैं। तो पहली बात आपने करी कि अरहर की फसल में हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, तो जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अरहर की फसल में लगभग 15 से 45 दिन की जो अवस्था होती है क्रांतिक होती है, इसमें हम जो है दो तरह के जो है खरपतवारों का नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। एक आता है एमेजे थपायर जिसकी मात्रा 300 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं, या एमेजे थपायर प्लस प्रोपक्यूजाफाफ आता है इसका हम उपयोग कर सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ या 2 लीटर 2.5 एकड़ में। पर ध्यान ये रखें कि जब खरपतवार नाशक का छिड़काव करें तो खेत में पर्याप्त नमी हो, 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी हो, इन दो बातों के साथ जो है हम इसका नियंत्रण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आपने एक प्रश्न करा सोयाबीन में पीलापन, ये एक आम समस्या रहती है जिसको हम पीला रोग, पीला मोजेक, मोजेक वायरस रोग, येलो मोजेक के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारी सोयाबीन उड़द की फसल होती है इसमें कुछ पौधे की पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, और जिस खेत में इसका प्रकोप होता है वहाँ पर सफ़ेद मक्खी भी रहती है, तो ये सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो यदि आपको लगता है आपके खेत में जो है कुछ पत्तियाँ या पौधे में पीलापन आ रहा है और सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी की दवा का यदि आप उपयोग करेंगे जैसे थायोमेथॉक्साम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन आता है या बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोरपिड आता है, तो दोनों में से कोई एक दवा का यदि छिड़काव करेंगे तो ये सफ़ेद मक्खी आपकी आसानी से नियंत्रित हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक और हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: हाँ जी जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे भैया?
3: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
1: जी जी मांगी लाल जी, कैसा गुना का कैसा अभी मौसम है?
3: मौसम तो अच्छा है मैम।
1: क्या लगाया है खेत में इस समय?
3: मक्का लगाई मैम।
1: ठीक है, तो क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
3: मक्का के बारे में पूछ रहा था मैं।
1: जी बताएं।
0: हाँ पूछिए।
3: मैंने दवाई छिड़क दी आज, उसके बाद में कई दिन के बाद में जो चारा मर जाएगा, दवाई डाल दी मैंने।
0: मक्का की फसल में आपने दवाई का छिड़काव कर दिया है तो कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा जब कचरा पूर्णतः जो है सूखने लगे एवं सूख

0: है तो 4 से 5 दिन का समय लगेगा, तो आपको ये जो है खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएगा। कौन सी दवा का छिड़काव किया था आपने?
1: जी
0: ठीक है,
1: बिल्कुल, मतलब एक उत्सुकता होती है कि किस तरह से क्या है कि
0: जी
1: हमने इसका उपयोग किया है दवा का, तो वो किस तरह से
0: रिजल्ट मिलेगा।
1: रिजल्ट
0: जी
1: कब मिलेगा, ये
0: जी
1: भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उत्सुकता हमारे किसान भाइयों के अंदर रहती है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाई भी सुनना जरूर चाहेंगे कि सोयाबीन में प्रमुख रूप से कौन कौन से जो कीट हैं वो लगते हैं और उनका क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है, इसका उत्तर हम आपसे लेंगे। लेकिन हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा,
2: हाँ जी, नेत्राम
1: कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: खोजा बोल रहा है जी, कोठिया।
1: क्या नेत्राम जी, कैसा मौसम है आपके यहाँ का, क्या स्थिति है?
2: मैंने जी मौसम तो अच्छा जी, मैंने 5 एकड़ में सोयाबीन वो है,
1: तो क्या प्रश्न है
2: मैं
1: आपका?
2: पत्तों में जी छेदा हो रहा है।
1: कितने?
0: छेदा हो रहा है, झरझरा लग रहा है, और बताएं।
2: हाँ जी,
0: झरझरा लग रहा है, पत्ते काट रहा है,
2: हाँ जी, हाँ,
0: और कोई समस्या?
2: और समस्या नहीं है जी।
0: ठीक है, सोयाबीन में समय जो है पत्ते काटने वाला कीट का प्रकोप रहता है, जिसको किसानी भाषा में हम झरझरा कहते हैं और अपनी वैज्ञानिक भाषा में ब्लू बीटल कहते हैं, नीला भ्रंग कहते हैं। तो समय किसान भाई इसका ध्यान रखें, सुबह शाम खेतों में जाएं, निगरानी करें, और खेत में यदि ब्लू बीटल का प्रकोप दिख रहा है तो उसके लिए हम दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रोफेनोफास आता है 50 cc, इसको हम उपयोग कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ की दर से, या क्लोरपाइरीफास आता है 50 cc, इसको हम उपयोग कर सकते हैं 500 ml एकड़ की दर से, या एक और दवा आती है क्लोरेंटा नीलीप्रोल, ये भी बहुत अच्छी दवा है इसका। तो तीनों में से कोई एक दवा का यदि हम छिड़काव करेंगे तो ये जो पत्ती काटने वाला कीट है, ब्लू बीटल झरझरा है, ये आसानी से नियंत्रित हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो ये तो आपने एक कीट के बारे में बता दी और जो नेत्राम जी ने पूछा था,
0: जी,
1: और कौन कौन से कीट हैं जो
0: सोयाबीन
1: सोयाबीन
0: की
1: में
0: फसल
1: हैं?
0: में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, फूल आने की अवस्था होगी, तो समय गर्डल बीटल का प्रकोप आता है, आगे चल के सेमी लूपर का आता है, चने किल्ली का आता है, तम्बाकू किल्ली का आता है, तो ये इसके प्रमुख कीट होते हैं और इनकी निगरानी करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसके लिए किसान भाई सुबह शाम खेतों का निरीक्षण करें और देखें खेतों में कहीं इल्ली का प्रकोप तो नहीं है, और उपयुक्त जो है अनुशंसित दवा का उपयोग करें।
1: बिल्कुल, आपने बोला अनुशंसित दवा का उपयोग करना, ये कितना आवश्यक है? कई बार हमारे किसान भाई सोचते हैं हम ज़्यादा दवा का उपयोग कर रहे तो जल्दी उसका असर मिलेगा।
0: कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार जो है किसानों के द्वारा जो है 2 या 3 दवाइयों को मिला के उपयोग कर लिया जाता है, ये पूर्णतः गलत है। जो फसलों के लिए अनुशंसित दवा है उसी का हमको उपयोग करना है, उसकी अनुशंसित मात्रा और साथ में पानी की मात्रा भी कम से कम 150 लीटर रखना है। यदि हम उपयुक्त दवा अनुशंसित दवा का सही तरीके से छिड़काव करेंगे तो कोई भी कीट हो, रोग हो, खरपतवार हो, उसका नियंत्रण बड़े आसानी से होगा।
1: बिल्कुल, ये अगर आपने बताया कि आसानी से तो हो जाएगा, लेकिन अगर समन्वित कीट नियंत्रण करना है तो कैसे हमारे किसान भाई?
0: समन्वित कीट नियंत्रण एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। जैसे हम देखते हैं किसान भाई कि केवल वो रसायनों का उपयोग करते हैं, तो केवल हमको रसायनों का उपयोग नहीं करना है, इसके लिए हम समन्वित कीट प्रबंधन की भी एक तकनीक होती है,
1: जी
0: तो इसमें हम पहले आती है टी आकार की
1: बिल्कुल,
0: खूंटी।
1: आपसे हम इस पे आगे भी उत्तर ले लेंगे। हमारे किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोले दीदी मनोज नामदेव।
1: मनोज भैया कैसे हैं?
3: बिल्कुल खूब है, खूब बढ़िया है दीदी, आपको आशीर्वाद कहानो भगवान की कृपा से,
1: भगवान
3: बहुत
1: की
3: बहुत
1: कृपा
3: बढ़िया।
1: बनी रहे भैया। और ये बताओ कि काका लगाए हैं खेत में?
3: दीदी इस समय तो हमने मूंगफली लगाई है और उर्द मूंग भी है, सोयाबीन भी और मक्का भी है।
1: तो क्या प्रश्न है आज?
3: जी जी बहुत ही बढ़िया दीदी, प्रश्न हमारा ये है के सोयाबीन में खरपतवार ज्यादा होगा, ये चौड़ी पत्ती वालों खरपतवार बहुत ही देखने मिल रहा हो और पाए तो बस नहीं रहा, अगर हम दवाई डाल हैं तो दवाई काम कर है कि नहीं कर है, 11% जो है, और खरपतवार मारने को कौन सो ऐसा दवाई है वो हम डाले तो मर जाए, सरसन जो पूछना चाहूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे आपके दोनों प्रश्न है। पहला तो जब भी हमको खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करें तो ये ध्यान रखें खेत में नमी का होना आवश्यक है। खेत में यदि नमी नहीं होगी या 2-4 दिन से पानी नहीं गिरा होगा तो कोई भी दवा का रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो पहला तो ये ध्यान रखें कि खेत में हल्की बारिश हो जाए, उसके बाद हम दवा डालें। और दूसरा आपने एक प्रश्न करा कि चौड़ी पत्ती के हमारे ज़्यादा खरपतवार हैं, तो उसके लिए एक दवाई आती है क्यूजोलोफाफिथाइल प्लस क्लोरीमुरान एथाइल करके दवाई आती है, 2 दवाइयाँ मिल के आती हैं, तो इसकी मात्रा रहेगी 375 ml 2.5 एकड़ में। तो इस दवा का यदि हम उपयोग करेंगे तो जो आपके चौड़ी

0: पत्ती के हैं, और यदि संकरी पत्ती भी होगी तो वो दोनों खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
2: जी।
1: भैया?
2: मैं बोल रहा हूँ कमल कुमार सुमन, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ से,
1: अच्छा,
2: गांव दुर्ला।
1: राजगढ़ से बोल रहे हैं। तो क्या
2: जी
1: प्रश्न है आज आपका?
2: जी जी ये जो सोयाबीन में आपका जो ये खरपतवार से संबंधित है
0: हाँ
2: ये सर, ये जैसे कि अपन खरपतवार का प्रयोग तो करते ही हैं, सभी कर रहे हैं, मैंने भी किया है, लेकिन ये जमीन के मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जो भी हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं वो निश्चित ही खरपतवार को तो नुकसान करता है, पर कुछ मात्रा में वो मृदा स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान करता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि हमेशा कि जब भी हम जो है बोने के तुरंत बाद देखते हैं, 10 दिन 12 दिन बाद, यदि कुलपा डोरा चल जाए, जैसे आपके जो मालवा क्षेत्र है, नेवार क्षेत्र है, यहाँ आज भी कुलपा डोरा चलता है, बैल जोड़ी रखे हैं, या 9 इंच के टायर जो रहते हैं, या कतार की दूरी यदि हमारी 14 इंच पे है, तो कुलपा डोरा या कुरपनी यदि निकल जाए तो वो बहुत लाभदायक होता है, बजाय रसायनों के उपयोग के। तो जितना हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं उससे निश्चित है मृदा के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले आप जो यांत्रिक विधि हमारी कुलपा डोरा, इसका उपयोग करें, उसके बाद यदि आपको लगता है तो कोई रासायनिक विधि का उपयोग करें।
1: बिल्कुल। हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: सर मैं, हेलो
1: जी, पहले आप अपना जो सेट है उसका वॉल्यूम कम करिए थोड़ा सा।
3: मध्य प्रदेश से
1: जी, हेलो,
3: देशराज सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी, देशराज जी गुना से बोल रहे हैं, बताएं क्या प्रश्न है आपका?
3: मैम मेरा हमारा ये प्रश्न है, जैसे अभी हल्की बारिश हो रही है तो ऐसे में कई किसानों की जिज्ञासा है कि जो खरपतवार की दवाई डाली जाए या न डाली जाए, क्योंकि इसमें नमी का होना बहुत जरूरी है, ऐसे में काफी समस्या आ रही है।
0: बिल्कुल, आपने पुनः एक बार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने पूछा कि हल्की बारिश हो रही है, तो जब भी हम दवा का उपयोग करेंगे तो ये ध्यान रखें खेत में नमी होना आवश्यक है। हल्की बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, या आपने दवा डाली उसके कम से कम 6 घंटे तक यदि पानी नहीं गिरता है, तेज़ पानी यदि नहीं गिरता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि तेज़ पानी गिरेगा तब आपकी खेत की दवा का असर जो है कम हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी की अवस्था में ही खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करें। 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग करें। फ्लैट जेट या फ्लैट फैन करके जो नोजल आते हैं उनका उपयोग करें, और हवा की दिशा जहाँ चल रही हो विपरीत दिशा में जो छिड़काव न करें। इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप खरपतवार का बड़े आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो मतलब थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई तो कम दवा में भी उन्हें अच्छा असर देखने मिलेगा। हम बात कर रहे थे कीट प्रबंधन की, तो आप एक जो उपाय बता रहे थे उसके बारे में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे।
0: हम सोयाबीन की फसल में समन्वित कीट की बात कर रहे थे। समन्वित कीट प्रणाली वो होती है जिसमें 2-3 प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे टी आकार की खोटी, सोयाबीन बोने के बाद यदि खेत में हम हर 10 मीटर पे कम से कम 1 एकड़ में 15 से 20 यदि डंडियाँ गाड़ दें, खूंटी गाड़ दें टी आकार की या 2 मुंह वाली, तो उससे क्या होगा, पक्षी आके बैठेगा और जैसे ही उसको इल्ली दिखती हो पक्षी वो जो है इल्ली को खा लेगा। तो ये हमारे कीट नियंत्रण का एक तरीका है। फिर हमारे कुछ नीम ऑयल आते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं, नीम ऑयल का कर सकते हैं। फिर हमारे कुछ जैविक कीटनाशक आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, या मठा है, छाछ है, तम्बाकू चूना है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर अंत में हम रसायनों का उपयोग करेंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये हमारा समन्वित तरीका है।
1: बिल्कुल। हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
4: नमस्कार, मैं मदीप चंद साहू बोल रहा हूँ, ग्राम बलभतपुर नंबर 1, थाना तहसील जैतपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से। मैम
1: बिल्कुल बिल्कुल, शहडोल में पानी वगैरह गिर रहा है दीपचंद जी?
4: जी मैं गिर रहा है, आज ही तो गिरा है, कल भी गिरा था।
1: क्या क्या लगाया है खेत में?
4: मैम हो गया अभी तो अपन ने कहा हो गया, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं।
1: तो क्या प्रश्न है आज आपका विशेषज्ञ से?
4: मैम प्रश्न ये था, अपन ने हमने खेत पे थरा थपरा लगाया था, तो जैसे कि 1 महीने से ज्यादा हो गई तो उसमें दिक्कत है क्या? मैम
0: क्या लगाया था फिर से बताएं?
4: फरा लगाया था धान का,
0: धान का रोपा लगाया था। जी
4: जी जी जी जी जी जी वही
0: जी,
4: वही सर।
0: हाँ हाँ हाँ तो अभी उसकी उसकी रोपाई नहीं हो पाई है।
4: अभी नहीं हो पाई।

0: फिर।
1: चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी पानी की क्या स्थिति, पानी पर्याप्त नहीं गिरा आपके क्षेत्र में?
0: नहीं सर, पर्याप्त नहीं था, कल से तो गिरा हुआ है। अभी
1: कौन सा किस्म का रोपा डाला था आपने? धान की कौन सी किस्म है, मोटा अनाज है कि सुगंधित है?
0: नहीं, 64 का है सर।
1: अच्छा, हाइब्रिड वाला है, हाइब्रिड कंपनी का है, प्राइवेट का?
0: जी।
1: हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दो चार छः दिन में।
0: और था सर मेरा,
1: हाँ पूछिए
0: सर मिर्चा में जो है तो बल्टी में खड़ा हुआ हूँ और पेड़ भी हो चुका है, उसमें फूल आ गए हैं सर, फर क्यों नहीं रहा?
1: दोनों का हम जवाब देते हैं। पहले तो आपने धान की रोपा की बात करी, तो देख लें यदि 5-6 दिन में यदि पर्याप्त पानी गिर जाता है, खेत में मचाई हो जाती है, तो धान का आप रोपा लगाएं, अन्यथा इसके बाद जो है 5-6 दिन में यदि लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर धान के रोपे में आप काफ़ी लेट हो जाएंगे, फिर आपका उत्पादन जो है नहीं मिल पाएगा। दूसरा, आपने मिर्च की बात करी कि मिर्च में फूल आ गया है, फल नहीं लग रहा है या फल झड़ रहा है, तो उसके लिए एक दवाई आती है, जैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है, 3 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें, और एक NPK आता है 052-34 करके, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। मात्रा रहेगी 1 kg 200 लीटर पानी 1 एकड़ में, तो इन दोनों में से किसी एक दवा का यदि आप छिड़काव करेंगे तो मिर्च में जो समस्या है इसका आप नियंत्रण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई बिल्कुल सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, विषय है सोयाबीन में समसामयिक कृषि कार्य, और आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे। डॉक्टर साहब, सोयाबीन की फसल में अफलन की समस्या भी होती है, इससे कैसे बचा जाए हमारे किसान भाई, इसके बारे में उन्हें बताएं।
1: कई बार ये देखने में आता है कि सोयाबीन की फसल में किसान भाई कहता है कि फूल नहीं आया, जबकि होता यह है कि उसका फूल जो है झड़ जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण है कि जो किसान भाई सोयाबीन की बुआई करते हैं वो जो है उसको घना ज़्यादा बोते हैं, 9 इंच या 12 इंच पे बोते हैं, जबकि सोयाबीन को 14 और 16 इंच पे यदि हम बोएंगे तो वो ज़्यादा घना नहीं होता है। तो अधिक घना होने से क्या होता है, उसमें गर्डल बीटल जो हमने बात करी थी, गर्डल बीटल जो है फूल बौणी को काट के गिरा देता है, और फिर किसान को ये लगता है कि साहब उसका सोयाबीन बढ़ता जा रहा है और उसमें फल नहीं आ रहा है या फूल नहीं आ रहा है, तो ये अफलन की समस्या रहती है।
2: बिल्कुल, हमारे एक किसान भाई और हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: जी मैम, मैं कुमराज से बात कर रहा हूँ, गुना जिला से।
2: जी जी बताएं, क्या नाम है आपका?
3: जी मैम, मैंने अभी मक्का की फसल लगाई है खेत में, तो उसमें क्या मैंने मतलब जैसे खरपतवार नाशी दवा डाल दिए, तो लगभग इसके कितने दिन बाद मैं यूरिया खाद रख सकता हूँ?
1: आपने मक्का की फसल में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर दिया है, तो ध्यान रखें कम से कम 5 से 7 दिन बाद हम यूरिया का छिड़काव करेंगे, क्योंकि हमको ये देखना होगा कि आपने जो कचरे की दवा का उपयोग करा है उससे कचरा पूर्णतः मर जाए, यदि वो मरेगा नहीं और आपने यूरिया रख दिया तो वो फिर से जो है जीवित हो जाएगा, तो कम से कम 5 से 7 दिन का इंतज़ार करें, जब आपका कचरा पूर्णतः पीला पर के सूख जाए उसके बाद ही आपको यूरिया जो है पौधों के नीचे जड़ के पास रखना है।
2: बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं कि सोयाबीन की फसलों में कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर साहब, पीला मोजेक वायरस जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है, सोयाबीन में भी उड़द में भी देखने मिलता है, तो अगर ये रोग दिखता है तो कैसे इसकी पहचान की जाए और नियंत्रण क्या हमारे किसान?
1: इसकी पहचान का बड़ा आसान तरीका होता है कि खेत में आप देखेंगे पहले कुछ पौधों की पत्तियों में पीला रोग, पीली पत्तियां दिखेंगी, वो कुछ ही होंगी, हो सकता 4 पौधे 10 पौधे 15 पौधे 20 पौधे, तो पहला काम उन पौधों को खेत से उखाड़ के नष्ट करना है, और फिर जो है उसके लिए उपयुक्त जो है कीटनाशक आते हैं, जैसे थायोमेथॉक्जाम प्लस लैम्डासाइलोथ्रेन या थायोमेथॉक्जाम एसिटामिप्रिट, तो एक किसी दवा का ध्यान ये रखना है कि पीला मोजेक के नियंत्रण में शुरुआती अवस्था में जो है सिंथेटिक पैराथ्राइड्स जो आते हैं उनका उपयोग नहीं करें।
2: बिल्कुल, और सफ़ेद मक्खी भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुत परेशान करती है सोयाबीन की फसल में।
1: जी, ये पीला मोजेक के जो है वाहक का कार्य करती है और इसको फैलाने का कार्य करती है, तो इसका नियंत्रण जो है बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी जैसा हमने आपको बताया कि एसिटामिप्रिड है, थायोमेथॉक्जाम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन है, मात्रा 200 ml प्रति हेक्टेयर, या बीटासाइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड है 400 ml प्रति हेक्टेयर, दोनों तीनों में से कोई एक दवा का यदि आप छिड़काव करेंगे तो आपका ये सफ़ेद मक्खी जो है आसानी से नियंत्रित हो जाएगा।
2: किसान भाई हमसे जुड़ने चाह रहे हैं। बिल्कुल, बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम मौसम

0: हम देख रहे हैं,
1: जी
0: कभी ठंडा कभी गर्म, कभी अचानक से पानी आ जाएगा या फिर कभी एकदम से धूप निकल जाएगी। तो ऐसे बदलते हुए मौसम में जो हमारे किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगाई है, उसका कैसे वो नियंत्रण करें और रख
1: बिल्कुल,
0: रखाव।
1: इसका सबसे पहला हमको देखना है कि फसल की निगरानी, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था कि सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे हम खेतों में जाएं, अंदर जाके देखें कि फसल में कहीं कीट रोग बीमारी कोई लक्षण तो नहीं है, और यदि हमको दिखता है तो हम उसके लिए पहले तो हमको फसल की सतत निगरानी रखना है, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है, पानी कम गिरेगा तो हो सकता है कीटों का प्रकोप हो जाए या रोगों का प्रकोप हो जाए, तो इस बात का हमको जो है ध्यान रखना है और उस हिसाब से हमको जो है नियंत्रण करना है।
0: बिल्कुल, बात हो रही है कि खरपतवार नाशी है दवाइयों का उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो अगर वो चाहते हैं कि जैविक उपयोग करना चाहते हैं तो जैविक उपायों में क्या क्या
1: नहीं,
0: है?
1: जैविक में तो केवल खरपतवार नाशक नहीं आते हैं, उसका यांत्रिक नियंत्रण है जिसको हमने पहले भी बताया था,
0: जी जी
1: कुल्पा है, डोरा
0: मैं थोड़ा
1: है।
0: सा रोकना चाहूंगी,
1: जी
0: हमारे एक किसान हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं
2: मैं कमल सिंह सोजोनिया, किरार,
0: जी? हाँ
2: दमुआ, तहसील जुन्नार देओ,
0: हाँ
2: जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम जी। जी
0: जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है
2: नमस्कार
0: भैया।
2: मैडम,
0: जी, नमस्कार।
2: मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, देख नहीं पाता हूँ।
0: जी जी
2: मेरा प्रश्न ये है
0: जी
2: कि जैसे आप लोग अभी सोयाबीन के बारे में बता रहे हैं,
0: जी
2: हमने सुना है कि सोयाबीन की जो फसल किसान लगाते हैं उससे धरती खराब हो रही है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे हम लोग जो उपभोक्ता है जो सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन की बड़ी खाते हैं, क्या हमारा शरीर भी खराब होता है मैडम ये सोयाबीन से? क्या
0: जी जी
2: डॉक्टर
0: जी
2: साहब विस्तार से बताइए जी।
1: हाँ हाँ
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल, आपने जो है बड़ा अच्छा प्रश्न करा है। सोयाबीन की फसल से हमारे खेत खराब नहीं होता है, ना मृदा पे खराब होता है। ये एक तेल वाली फसल है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तेल की मात्रा होती है, तो इसमें जो है हमको यदि खादों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे सल्फर का उपयोग है ना, तो सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है कि बुआई के समय हम जो है पहले हम राखड़ का उपयोग करते थे, सिंगल सुपर फास्फेट राखड़, तो 2 बोरी एकड़ के हिसाब से हम राखड़ का उपयोग करें, और यदि हमने उपयोग नहीं करा है तो बेंटोनाइट सल्फर का आता है 95%, इसका हम उपयोग कर सकते हैं 10 किलो एकड़ के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि सोयाबीन की वजह से हमारे मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, फसल चक्र में परिवर्तन होते रहना चाहिए, एक ही फसल को कई साल तक नहीं लगाना चाहिए। तो यदि हम फसल का बदलाव करेंगे, सोयाबीन की जगह मक्का लगाएंगे, मक्का की जगह धान लगाएंगे, धान की जगह अरहर लगाएंगे, तो हमको अपने खरीफ फसलों का फसल चक्र को लगातार हर 2 साल में 3 साल में फसल चक्र यदि हम बदलते हैं तो उससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य जो है बना रहता है।
0: बिल्कुल, और इन्हें एक प्रश्न और किया, क्या सोयाबीन खाना
1: हाँ
0: मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है?
1: बिल्कुल अच्छा है,
0: हाँ
1: प्रोटीन की पूर्ति होती है,
0: जी
1: आवश्यक भी है,
0: जी
1: तो उसको बड़ा सीधा सिद्धांत है, यदि हम 10 किलो आटा पिसा रहे हैं तो उसमें आधा से 1 किलो यदि हम सोयाबीन को मिला लें तो उसको मिला के यदि हम खाते हैं तो प्रोटीन की पूर्ति होती है और लाभदायक होता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। हमारे एक और किसान हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा बोल रहे हैं?
3: जी मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं नरेंद्र जी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर से।
0: जी
1: जी
0: जी
1: नमस्कार,
0: बताएं क्या है नरेंद्र भाई, आज का प्रश्न क्या है आपका?
3: मेरा सवाल ये है कि हमने सोयाबीन बोई JS 2172 1 महीने 3 दिनों की हो गई मैम, उसमें छोटी छोटी हरी इल्लियां लग रही है, और दूसरा सवाल ये है कि हमने खरपतवार नाशी दवा डाली थी मैडम, वो 50% काम किया था, उसमें डबल से डाले कि हाथों से उखड़ाएं उसको?
1: यदि संभव हो तो आप हाथ से उखाड़ लें, और नहीं तो लगता है तो आप खरपतवार नाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं। आपने एक हरी इल्ली की बात करी कि हमको सोयाबीन की फसल में इल्ली का प्रकोप दिख रहा है, तो उसके लिए जो है अभी जो है क्लोरेंटानीलिप्रोल दवाई आती है 18.5 SC के नाम से, इसका हम उपयोग कर सकते हैं 60 ml एकड़ के हिसाब से, 150 ml हेक्टेयर के हिसाब से, या प्रोफेनो प्लस साइपर आता है तो हल्की दवा का हम उपयोग करके जो हरी इल्ली को नियंत्रित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहुत जागरूकता से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सभी सुन रहे हैं हेलो ग्राम सभा, सोयाबीन में समसामयिक कृषि कार्य, डॉक्टर स्वप्निल दुबे आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हमारे एक और किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे
4: जिला छुलकारी गांव से,
0: हेलो हेलो ग्राम सभा, कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: दिनेश केवट बोल रहा हूँ मैं।
0: दिनेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
4: ये अनूपपुर जिला ग्राम छुलकारी।
0: अच्छा, कैसा है अनूपपुर का मौसम, कैसा चल रहा है?
4: ये अपने एरिया में, ये फुनगा एरिया में तो किसान का काम जारी है,
0: और क्या बोया है आपने दिनेश जी?
4: ये धान बोया है मैं, ये जो जैसे रोपा लगाएंगे हम, तो उसमें खरपतवार ज्यादातर आ जाता है।

0: जैसे कि हाइब्रिड थोड़ा दूरी दूरी रहता है,
1: हाँ
0: तो उसके लिए क्या उपचार करें?
1: हाँ रोपा वाले धान में कई बार जो है खरपतवार की समस्या रहती है, और इसमें दो तरह के खरपतवार रहते हैं धान के। यदि हम बात करें, एक तो सांवा आता है जो धान जैसे ही होता है, और दूब घास आता है या चौड़ी पत्ती के आते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त जो है बिस्पायरीबैक सोडियम है, क्लोरीमुरान प्लस मेटसल्फुरान है, कोई एक दवा का आप उपयोग करें तो इससे आप धान में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों ने बहुत जागरूकता और सजगता के साथ आज का हेलो ग्राम सभा सुना और उसमें भाग भी लिया। किसान भाइयों, समय सीमा का ध्यान रखना हमारे लिए हमारी मजबूरी है। आज के हेलो ग्राम सभा को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। जिन किसान भाइयों ने फ़ोन किया उनका हृदय से धन्यवाद। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आज का जो हेलो ग्राम सभा था उसका विषय था सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य। विशेषज्ञ हमारे साथ थे डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। कार्यक्रम अधिकारी थे श्री चंद्रशेखर शर्मा, ड्यूटी ऑफिस स्वाति राजपूत, कंट्रोल रूम अधिकारी आर एस मीना, राजू वासे, उद्घोषक हमारे साथ थे अभिषेक शर्मा, और मैं थी आपके साथ डॉक्टर रानी रेगवार। और आपको चलते चलते कल के कार्यक्रम बता दें, कल कृषि चर्चा में सुबह ज़रूर सुने 6:45 पर खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में। और कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सलाह ज़रूर पत्रों के माध्यम से हमें बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन है 462002। और किसान भाइयों, कल सोमवार को फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का आपका अपना कार्यक्रम होगा लोक रंग, इसे ज़रूर सुनिएगा और अब इन गीतों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी सार्थक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान
1: सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: बिल्कुल, तो किसान भाइयों, अपन ने आपने जो इतनी अच्छी बातें करी कि चाहे आप अरहर लगाएं, चाहे आप सोयाबीन लगाएं, चाहे आप मक्का लगाएं, लेकिन अगर आप निगरानी करेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। निगरानी करने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप कीट नियंत्रण करें, किस तरह से आप फल उपयोग करें अपनी दवाइयों का, और खरपतवार नाशी आप उतना ही उपयोग करें जितनी की अनुशंसा की जाती है। तो कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अपनी ईरानी बहन को दें अनुमति, स्वीकार करें। राम राम, जय सीताराम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संबोधन मन की बात की 136वीं कड़ी, जिसमें कारगिल विजय दिवस से लेकर आत्मनिर्भर भारत, जल संरक्षण, अंतरिक्ष, विज्ञान, पर्यावरण, स्थानीय उत्पादों और जन भागीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन का हार्दिक स्वागत है।
3: नमस्कार
2: अशोक जी, आपकी दृष्टि में प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संस्करण का मूल संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ संवाद है या राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक सोच को भी प्रस्तुत करता है?
3: प्रधानमंत्री अपनी हर महीने की आखिरी रविवार को जो जनता के साथ संवाद करते हैं वो एक तरफा नहीं है। उसमें उस महीने में जो घटनाक्रम हुए होते हैं, जो भारत की उपलब्धियां होती हैं या भारत की जनता द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और इस कड़ी में अगर जैसे आपने भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे आज के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जब इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि

0: हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी तिथियां हैं जिन्हें याद करने के लिए कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज 26 जुलाई एक ऐसी तारीख है जब कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि ये दिन हमारे गर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद को भी दिलाता है। तो इससे हमको याद आया कि कारगिल युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कठिन मौसम में दुश्मन की चुनौती और इस हर परिस्थिति को हमारे सैनिकों ने इसका सामना किया था और उनका जो हौसला था वो हर चुनौती से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया था। जब कारगिल दिवस पर उन्होंने सब वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया, तो इस तरह से एक याद दिलवा दी कि भारत ने कारगिल पर जो है विजय कैसे हासिल की थी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ साझा किया कि भारत की जो अपनी तकनीकी क्षमता है वो भी दिन दिन बढ़ रही है,
1: जी
0: और कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज जो है ये भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और उससे बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। और इसी महीने DRDO ने जो पिनाकल लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया, और इस परीक्षण के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जो सामूहिक परिश्रम है। तो 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। यानी आज रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। और इस महीने की शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने इंडोनेशिया की यात्रा की भी चर्चा की, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। यानी दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: अशोक जी, आपने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया अभी, और आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने शौर्य दिवस के बारे में क्या कहा है।
2: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: अशोक जी, आपने अभी उल्लेख किया INS महेंद्रगिरी का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का और कुशा मिसाइल का। क्या ये भारत की बदलती हुई सामरिक नीति और आत्मनिर्भरता में एक नए युग की शुरुआत है?
0: बिल्कुल, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से विशेष तौर से जो सैन्य सामग्री है उसके लिए विदेशों पर ही निर्भर रहता था, और ऐसा माना जाता था कि शायद भारत में तो तकनीकी क्षमता है ही नहीं। तो ये जो अब भारत की अपनी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है ये पिछले 12 वर्ष में देखने को मिली है, और उसी का ये उदाहरण है कि जैसे INS महेंद्रगिरी शामिल हुआ, जैसे मैंने पहले कहा ये भारत में ही बना, भारत में डिजाइन हुआ। 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो हम अपने मित्र देशों के साथ एक सामरिक महत्व के जितने भी उपकरण हैं वो हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे मिसाइलों का बड़ा भाई एक समझौता इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री करके आए हैं। तो इसलिए अब दुनिया का भरोसा भी, विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं उनका भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत को बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं हमारे रक्षा उपकरणों के।
1: प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के पहले भारतीय रॉकेट विक्रम 1 और विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया।
2: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम

0: दुनिया देख रही है।
1: अशोक जी, क्या ये भारत के नवाचार और ओलंपियाड के लिहाज से देखें तो युवा शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है?
2: बिल्कुल, साइंस में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है, साइंस ओलंपियाड जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं, और इसी महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड भी हुए थे, और इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में तो हमारे सभी 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की, और पिछले 1 दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के विद्यार्थियों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में तो हमारे सभी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी विद्यार्थियों ने मेडल जीते, और इनमें से एक गोल्ड मेडल के बारे में जो कहा जाए कि वो तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते, उनके नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर गर्व है, और ये देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकथॉन का कल्चर बढ़ रहा है, और देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम पर अपना एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और भारत का परचम भी लहरा रहे हैं।
1: जी, इस बार मन की बात में चटाई, हर्बल चाय, खादी, हथकरघा और स्थानीय उत्पादों का विशेष उल्लेख हुआ है। खादी पर प्रधानमंत्री ने कहा,
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: अशोक जी, क्या अब वोकल फॉर लोकल की बात थी, वो अब नारा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का रूप ले चुका है?
2: हर एपिसोड में प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और उसमें किसी न किसी हमारे एक प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो आगे दुनिया में भी हो रही है, और कैसे हमारे स्वयं अपने जो लोग हैं वो किस तरह से इसकी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चाय के बारे में उन्होंने बात की, चटाई के बारे में बात की, और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाय की वो चर्चा करते हैं उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की एक खुशबू भी घोल दी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है, तो इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसे प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं, और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी पहचान बन रही है। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण प्रधानमंत्री देते हैं कि जिससे हम अपना आत्मनिर्भरता की तो बढ़ते ही हैं, लेकिन वोकल फॉर लोकल का जो नारा है कि हमारा जो लोकल उत्पाद है उसको भी हम प्रेरणा दें, उसका इस्तेमाल करें, और दुनिया में भी उसकी मांग बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, गुरु पूर्णिमा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का उल्लेख भी किया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने तिरंगा के बारे में क्या कहा।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री इन विषयों को अक्सर रेखांकित करते रहे हैं, क्या इससे राष्ट्र भावना और नागरिक सहभागिता को नई ऊर्जा मिलती है?
2: देखिए, केवल अगर प्रधानमंत्री इसकी बात करके छोड़ दें और एक नारे की तरह, तब तो इसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब वो इस बात को आंदोलन के रूप में चलाने की बात करते हैं और देश उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में अड़ चढ़ कर भाग लेता है, तब वो ये सब बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता का पर्व है, तो उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा का जब से एक ये अभियान चलाया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान देश में पूरी तरह से एक अद्भुत भावना से जुड़ गया है, और हर गली हर घर में हम तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है, यानी लोग इसमें भाग लेते हैं, और ये अभियान जो है इसको आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की बात का लोगों पर असर होता है।

0: और जो भी अभियान वो लेते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो हर घर तिरंगा की बात करें, ऐसे कई अभियान प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में चलाए हैं जो जन भावना से जुड़े होने के कारण लोक अभियान में भी बदले हैं, जिसके कारण ये सब चीजों में भारत आगे बढ़ रहा है।
1: और प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील दोहराई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे अभियानों से जन भागीदारी अब सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी ताकत बन रही है?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जल संरक्षण का जिसमें प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में इसके बारे में बात करते हैं, और उसके चलते ये जो जल अभियान है यानी जो इसको संरक्षण करना है ये भी हर बार रहती है। और जैसा प्रधानमंत्री ने पिछले एपिसोड में कहा था कैच द रेन, तो इस अभियान की चर्चा की थी और उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं, और अब वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो ये जो संदेश सीधा जहां बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए, इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, इन सबको नई गति मिली है। और गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ले रहे हैं, और कई पुराने तालाबों को लोगों ने गोद लिया है, उसकी गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं कहीं बावड़ी। ये जो जीवन का एक संदेश है, ग्राउंड वाटर को इस माध्यम को बनाया जा रहा है, पानी की हर बूंद बचाएं, आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया, और लोगों के इस जुड़ाव का भी उन्होंने चर्चा की, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि ये कैच द रेन अभियान आगे चलकर और तेजी पकड़ेगा।
1: जी अशोक जी, आपने मन की बात के इस संस्करण में उठाए गए विषयों का अत्यंत सारगर्भित विश्लेषण किया। कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की।

कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को

0: दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी, धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा ये साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है। और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं, इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
2: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सकें।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं हैं?
2: पर्यावरण के लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथीन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
2: निश्चित रूप से, एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसे के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज़ किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके। और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है, से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
2: निश्चित रूप से, हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सब

0: विद्यालय में हो रहा है, अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमश्री योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएमश्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, NID है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें

0: जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं, तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहाँ से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार। बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोज़र के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं, ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस, इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया, जिसको हमने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम, तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपलसरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है, जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करके क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी दिया जाता है, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड और जो वेस्ट मेटल को यूज़ करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
2: श्रोताओं, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
4: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरैक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया, कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफ़ी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफ़ी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए ये हमारे स्कूलों को काफ़ी बुलंद ऊँचाइयों पर भी ले कर जाएगा।
5: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है

0: कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है, और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, योगदान था आकाशवाणी भोपाल का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म 10 से। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 2005 में। के और शान की आवाज़ में ये गीत है, जिसे लिखा है पंछी जालोनी ने और विशाल शेखर का संगीत है।

केके और शान की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दस से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत है 2008 में रिलीज हुई फिल्म युवराज से सोनू निगम, श्रीनिवास और साथियों की आवाज में गीत है, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

0: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰਬੀ ਦਾ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਾਨ ਸਟਾਪ।
1: श्रोताओं, यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत 2019 में रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज से। इस गीत को गाया है दिलजीत दोसांझ, सुखबीर और ध्वनि भानुशाली ने। कुमार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लियो जॉर्ज, डीजे चेतस और सुखबीर ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और अब हम लेंगे छोटा सा अंतराल।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
4: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने

0: फास्ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने

0: और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को

0: बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चिदंबरम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी

0: का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है.
3: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन. आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री. वी हैड कंटिन्यूअस मीटिंग्स टुडे. दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी. आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स. इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली.
2: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा.
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
4: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है. देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है. और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें.
1: Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
4: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
1: The main function of the Kargil Vijay Divas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का.
6: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी. फ्रेंड्स, आवर इंटेंशन इज क्लियर. देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट POK विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान,
5: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया.
1: The defense minister also highlighted the success of Operation Sindoor as a proof that India possesses the capability to respond to Pakistan's every misadventure with a severity far beyond its imagination. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in.

0: crore rupees so far in July. According to the latest depository data, FPI has infused 3,049 crore rupees in the domestic stock market last week. Meanwhile, India's debt market continued to attract strong foreign inflows. So far in July, foreign portfolio investors have invested 9,521 crore rupees in debt securities through the fully accessible route and 27,391 crore rupees through the general route. UNESCO today added the World War II D-Day landing beaches in France, Greece's Mount Olympus, Japan's ancient capitals of Asuka and Fujiwara, and South Sudan's Boma Badingilo migratory landscape to the World Heritage List. The designations were approved during a UNESCO committee meeting in Busan, South Korea, which reviewed global nominations. The newly inscribed sites recognize outstanding cultural and national heritage, including the historic Normandy invasion beaches, Greece's mythical Mount Olympus, Japan's early imperial capitals, and South Sudan's vast wildlife migration landscape. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-power task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in women's 48-kilogram event, and Rishikant Singh bagged silver in men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलेकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने ख़वातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है, और ऋषि कांत सिंह चंबन ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इम्तिहानात की इस्लाहात के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलेकनी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहान का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डे का, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी।

0: के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया, जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर

0: में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वज़ीर आज़म ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया, जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागो चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का अख्ताम करते हुए योम आज़ादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीज़ों से नवाजें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं, बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तस्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया, जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुष्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तस्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत के महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बाइस कल से ओडिशा से बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केवनझार अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा के तेज दबाव के बाइस मूसलाधार बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। एहतियात के तौर पर रियासती सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया गया है। हुक्काम ने अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा होने और वसी पैमाने पर पानी भर जाने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा समंदरी सरगर्मियों को रोक दिया गया है। तमाम बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 नष्ट किया गया है और माहीगीरों से अगले अहकाम तक समंदर में न जाने का

0: प्रकाश वाला दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषिकांत सिंह चनम्बम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निपटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीरे आज़म मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीरे दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा का। श्रोताओं, रेडियो केवल ध्वनि का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, स्मृतियों और अपनत्व का एक ऐसा पुल है जो दूरियों को भी निकटता में बदल देता है। कभी एक पत्र लिखने में कई दिन लगते थे और उनमें जो आत्मीयता होती थी वो अनमोल होती थी। उन्हीं पत्रों, उन्हीं चिट्ठियों के माध्यम से आज आप अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उन्हें पूरे स्नेह के साथ आप तक वापस सप्रेम पहुंचा रहे हैं। श्रोता, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जमाने में आज भी देश के विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों से आपके प्यार भरे पत्र इस बात के साक्षी हैं कि संगीत लोगों के दिलों को जोड़ता है और ये चिट्ठियां, ये पत्र उसका माध्यम बन रहे हैं। आपकी हर चिट्ठी अपने साथ कोई ना कोई याद, कोई मुस्कान, कोई भावना या किसी प्रियजन का संदेश लेकर आती है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पसंद का आपकी फरमाइश का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है 2004 में रिलीज हुई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, जिस गीत की फरमाइश की थी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश बक्सर बिहार से की थी शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी ने। तो ये था कार्यक्रम का पहला गीत और अब देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से आई है। श्रोताओं, कार्यक्रम की

अगली फरमाइश आई है मध्य प्रदेश रीवा जिले से। इस गीत को सुनना चाहा है जया, अभिषेक और उनके पूरे परिवार ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, आपको बता दें ये गीत हमने लिया है फिल्म क्रिमिनल से, जिसकी फरमाइश अभी की गई थी। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1994 में। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल इंदिवर के हैं और संगीत है एम करीम का।

तेरे पास पास। श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रिमिनल से, और इस गीत की फरमाइश की थी कवन कॉलोनी बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति और शिवानी श्रीमाली ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था रीवा मध्य प्रदेश से जया, अभिषेक और उनके परिवार ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। देश के विभिन्न भागों से लगातार हमें पत्र प्राप्त होते हैं जिसमें आपकी सुंदर लिखावट, स्नेह भरे शब्द और संगीत के प्रति आपका अनुराग हमें हमेशा प्रेरित करता है। आपके कई पत्र तो ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है मानो आप हमारे सामने बैठे हों और अपनी पसंद का गीत स्वयं सुनाने का आग्रह हमसे कर रहे हों। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से आई है। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन नारा ने, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहब्बतें से।

श्रोताओं, ये गीत है फिल्म मोहब्बते से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 2000 में। इस गीत को गाया है उद्भव मनोहर शेट्टी और साथियों ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और जतिन ललित का बेहतरीन संगीत। तो आनंद लीजिए इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म मोहब्बतें से गीत अभी आप सुन रहे थे। उद्भव और मनोहर शेट्टी की आवाज में जतिन ललित का संगीत था और बोल थे आनंद बख्शी के। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आइए देखते हैं अगली चिट्ठी कहां से आई है और किस गीत की फरमाइश इन्होंने की है। श्रोताओं, अगली चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। इस गीत को सुनना चाहा है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और नारायणपुर कोटवा से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और हैप्पी राय ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और

श्रोताओं, इस गीत के बारे में बता दें आपको, ये गीत है 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग से। अलका याग्निक और कुमार सानू की बेहतरीन आवाजें हैं, समीर के बोल हैं और संगीत है नदीम श्रवण की जोड़ी का।

0: श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, और कार्यक्रम का अंतिम गीत, इस गीत की फरमाइश आई है सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और उनके परिवार की तरफ से। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है अकोला महाराष्ट्र गांधीबाग से कटनकर परिवार ने, और साथ ही राजकोट गुजरात से मधुसूदन भट्ट और उनके पूरे परिवार ने। तो आनंद लीजिए कार्यक्रम के इस अंतिम गीत का।
1: फिर से मिलने की जहाँ पे

0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत। 2024 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज में ये गीत था। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर की जोड़ी ने। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त अभिषेक शर्मा को। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार। इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ संतूर रिसाइटल बाय इंडियाज फर्स्ट फीमेल संतूर मेस्ट्रो विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, हु इज द ओनली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द सूफियाना घराना टू अचीव इंटरनेशनल अक्लेम इन संतूर प्लेइंग।
1: डॉक्टर वर्षा जी ने गायन और तबले की शिक्षा मात्र 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी और आगे चलकर प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
2: डॉक्टर वर्षा जी बिगन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव्ड प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी। शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मेस्ट्रो पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी। Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉ. वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
2: Currently serving as a professor of music at the Government Girls PG College of Excellency Ujjain, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
1: Vidushi Varsha Agrawal भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में

0: अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, द लिसनर्स आर लेफ्ट स्पेलबाउंड। थ्रू हर रिलेंटलेस डेडिकेशन, रिमार्केबल कमांड ओवर रिदम एंड मेलोडियस परफॉर्मेंसेज ऑन प्रेस्टिजियस स्टेजेस, शी हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क इन द फील्ड ऑफ संतूर प्लेइंग।
0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल अपने संतूर वादन की शुरुआत राग झंझोटी से कर रही हैं। इसमें वे आलाप, जोड़ और झाला के पश्चात विलंबित गत जो त्रिताल में है, मध्य गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप, जोड़ एंड झाला, she will present a vilambit gat in teen taal, a madhya gat in ek taal and a drut gat in teen taal. Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a dhrutgat in teen tal.